0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी।

0: आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi, the Prime Minister said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. The government has imposed a limit of 100 kg on gold imports under the Advance Authorization Scheme, which allows jewellery exporters to import raw or input materials at zero duty. In a public notice, the Directorate General of Foreign Trade said, advance authorization for import of gold shall be issued subject to a maximal remissible quantity of 100 kilograms. The Directorate General added that any subsequent advance authorization for the import of gold

0: आइए सुने अनूप जलोटा की आवाज में ये भक्ति रचना।
1: एक दिन नटखट नंदलाला गोपाला माखन चोरी की लीला करते हुए मटकी तोड़कर माखन खाते हुए पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के सामने लाए जाते हैं। महाकवि सूरदास जी के शब्द में सुनिए।

कर कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन

आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी। मैं तुझे सब सच सच बताता हूँ।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने सरदुल सिकंदर की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। शिव बजकर 45 मिनट हुए, कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: आज इस संसार के अंदर अगर हम देखें तो एक इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा है, और इस इंसान ने कितने ही रूप बना लिए हैं। कहीं तो भ्रष्टाचार का रूप लेकर बैठा है, तो कहीं पे आतंकवाद का। और जो लोग ऐसे लिबास पहनकर बैठे हैं, उस व्यक्ति का ना तो मजहब हो सकता है और ना ही ईमान हो सकता है। और उसी इंसान की ये अपनी सोच, अपने ही विचार हैं कि वो अपनी डेफिनेशन, अपनी परिभाषा क्या देता है कि मैं क्या हूँ। वो इंसान कहता है कि ना ही मेरा खुदा है ना ही भगवान है, कि मेरा ना तो खुदा है और ना ही भगवान है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का ईमान इंसानियत नहीं है। उस इंसान ने अपने आप को स्वार्थों के अंदर अपने आप को लपेट लिया है, अपने आप को उस ढांचे में ढाल लिया है, और उसी ढांचे में रहकर वो इंसान अपनी डेफिनेशन देता है कि मेरी ये पहचान है कि मेरा ना तो खुदा है और ना ही भगवान है। और ऐसे व्यक्ति का ना तो कोई मजहब हो सकता है और ना ही ईमान हो सकता है। ऐसे लोग हमेशा से ही मानवता के दुश्मन बनकर नजर आते हैं, और जो एक इंसान को, एक समाज को, एक राष्ट्र को हमेशा से ही दुख और ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिससे उस समाज का, उस राष्ट्र का माहौल खराब होता है। आज हमें खतरा किसी पशु या किसी जानवर से नहीं है, जितना खतरा आज हम एक व्यक्ति से है, एक इंसान से है। क्योंकि आज का इंसान है कैसा, चेहरे पे चेहरा लगाए इंसान नजर आता है, उतरा जब चेहरा तो शैतान नजर आता है। ये इंसान की आज फितरत बन चुकी है, क्योंकि वो अपने चेहरों के ऊपर इतने चेहरे लगा बैठा है कि वो आज अपने मूल, अपनी पहचान ही भूल बैठा है। क्योंकि एक एक इंसान जब घर से निकलता है तो उस इंसान के कितने चेहरे हैं, ऑफिस में क्या है?

0: घर पे क्या है, समाज के लोगों के बीच में क्या है। और इसीलिए किसी अजीज ने कहा है कि ना खंजर रखता है ना तलवार रखता है, पक्का खिलाड़ी है मुखौटे चार रखता है। हर जगह अपने चेहरे को बदलता है और बदल कर वो इंसान को धोखा देता है, एक मानव को धोखा देता है, लेकिन वो धोखा किसी मानव किसी इंसान को नहीं, वो अपने आप को दे रहा है। क्योंकि वो इस बात को भूल चुका है कि जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी जो है, जीवन जो है, ये किराए का घर है। एक ना एक दिन इसे बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, उस वक्त इंसान क्या करेगा? किराए के मकान में बैठकर कब तक हम लोग उस सच्चाई से भागते रहेंगे? और एक ना एक दिन इंसान को उस सच्चाई, उस इंसान की समझ में आएगी। जब वो जान पाएगा, तब उस इंसान के हाथ में पछतावा होगा। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने आकर इंसान को यही समझाया कि उनका अपना एक निजी अनुभव रहा। जब वो एक इंसान की खोज में निकले, ऐसे लोगों को देखा, जब उनको ऐसे लोग, अच्छे लोग नहीं मिले, नहीं नजर आए, तभी ऐसे लोगों के लिए उन्होंने लिखना पड़ा कि अक्सर लोग रात के अंधेरे में मशाल लेकर घूमते हैं, हम तो दिन के उजाले में भी इंसान को ढूंढते हैं। आज इंसान नजर नहीं आता है हमें, क्योंकि इंसान हो तो नजर आई, वो मानवीय गुण नहीं तो इंसान कैसा? फल किसे कहते हैं? जिसके अंदर जूस है, जिसके अंदर रस है। इसी प्रकार से इंसान क्या है? जिस इंसान के अंदर इंसानियत है, अगर उसमें इंसानियत का गुण है तो इंसान है, अगर उस इंसान में इंसानियत का गुण नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इसीलिए आज हमारे समाज की, आज हमारे राष्ट्र की ये हालत हो चुकी है कि इंसान मानवीय गुणों को छोड़ चुका है, और जिसके कारण ये इंसान पतन की ओर बढ़ रहा है। इसका अपना ही पतन हो रहा है, ये अपने आप ही गिर रहा है। और ऐसे गिरते हुए मानव को अगर उठा सकता है तो एक ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, और ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हर एक व्यक्ति को करना चाहिए।
1: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

अब से कुछ देर बाद यानी 7:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम खेतीहरा वास्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे कृषि में जल संरक्षण और साथ ही हम सुनेंगे लोक भजन। मानस गान भाग संख्या 244 आप सुनेंगे 7:20 पर। सुप्रभात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे योग और व्यायाम के लाभ, क्रोध मनुष्य का शत्रु, जल्दबाजी कितनी घातक। 8:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारे कार्यक्रम मरुमंगल। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सवेरे 9:10 पर। कलाकार होंगी मीनाक्षी शर्मा। 9:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गा मेरे मन गा। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 10:00। 11:00 आप सुनेंगे गीतमाला फरमाइशी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:05 पर। 12:30 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम खेत खलियान। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी आप लेंगे बुआई से पहले करें खेत तैयारी। दोपहर 1:05 पर सुनेंगे घर आंगन। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, गर्मी में पौधों की देखभाल, पौष्टिक नाश्ते से घटाएं वजन, आम से बनाएं बेहतरीन व्यंजन। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। शाम 5:00 सुनेंगे युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, ग्रामीण विकास में

व अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, नेत्रदान, महादान और आज का इतिहास इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। सराइकी कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। ग्रामीण परिवार अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल शाम 7:00। इसमें आप सुनेंगे गीतारव गजरो कार्यक्रम सुनेंगे और साथ ही जान पाएंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। 7:45 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। एक ही फिल्म से जानकारी और गीत आप सुनेंगे, ये फिल्मी संगीत हमारा कार्यक्रम रात्रि 8:00। 9:15 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10:30 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। तो ये थे हमारे कुछ खास कार्यक्रम, उनके समय के बारे में जानकारी।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य यूएई नेदरलैंड स्वीडन नॉर्वे इटलीति देशानां षड् दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी यूएई देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डल प्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य प्राकृतिक अनिल ईंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल ईंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः परीक्षां कर्तुं

0: रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तरप्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मण्डलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मण्डल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्रसर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतम् आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनाम् अथवा निवेश सामग्रीणाम् आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5,00,000 टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टुपर्थी में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। श्री राजनाथ सिंह अनकापल्ली जिले के टी सिरसापल्ली गांव में भारत डायनामिक्स लिमिटेड की नई अत्याधुनिक नौसेना प्रणाली निर्माण सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7

परिसरों में तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम मंजूरी योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिन में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल में भी हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुंग गोंगा को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलो और सांडा में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। ताउलो जिम्नास्टिक और मार्शल आर्ट का मिश्रण है। इसमें प्रतियोगियों को उनके मूवमेंट के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आईपीएल क्रिकेट में प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा और मुंबई इंडियंस ने कल पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: European Union has included India in the revised draft list for continued export of aquaculture products to the EU market. The Ministry of Commerce and Industry said that the earlier regulation had not included India among third countries authorized to export products of animal origin intended for human consumption to the EU from September 2026. The revised draft list follows compliance measures undertaken by India in line with the European Commission delegated regulation. The ministry said that India's proposed inclusion is a major positive development for the country's seafood export sector. The European Union is one of the key destinations for Indian seafood exports. In Uttar Pradesh, 111 people have died and 200 injured in the last 36 hours due to rain, storm and lightning. Chief Minister Yogi Adityanath directed the DMs and relevant officials to immediately conduct a survey on the spot. He also asked them to update the status of compensation every 3 hours. The worst hit areas included Prayagraj, Bhadohi, Mirzapur, Fatehpur and Varanasi. Enforcement Directorate ED has arrested Kolkata Police Deputy Commissioner Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. ED had been questioning Shantanu at the CGO complex in Kolkata since yesterday morning. The CBI has conducted searches at 7 premises across Mumbai, Gurugram and Bengaluru in connection with a case registered against Reliance Communications Limited, one of the ADA group companies. According to a statement, searches were conducted at the residential premises of the then CEO, CFO and directors of the company who served during the period 2015-17. Indian wushu player Aparna Dahiya clinched a gold in the women's 52kg category at the 11th Sander World Cup in Macau yesterday. Aparna beat reigning world champion Thi Phuong Yago of Vietnam in straight sets in the final. This was India's first gold in the event, which began on May 12. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:10 हुए हैं। कार्यक्रम सुने खेती हवा से। इसमें जानकारी आप ले रहे हैं कृषि में जल संरक्षण।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज बात करांगा अपा सिंचाई जल के सदुपयोग की। या अपा यहाँ भी केस कहा कि सिंचाई के पानी की बचत करनी। जी हाँ, थे सारा जानो ही हो कि सिंचाई को पानी की बचत करनी कितनी जरूरी है और बहुत लाभदायक भी है। और अपा सुना यहाँ कि पानी की तो बूंद बूंद की बचत करनी चाहिए क्योंकि पानी अपनी एक अनमोल धरोहर है। किसान भाइयों फसल बीजते टाइम आपा ने वो ध्यान रखना है कि जिकी फसल ने कम सिंचाई की जरूरत हो और लाभ ज्यादा हुए बी किस्म की बीजांती आप अपने खेत में करा। कई बारी किसान भाई जानकारी के अभाव में कोई इसी किस्म की बीजांत कर ले जिके हम सिंचाई बार बार करनी पड़े और लाभ भी घणो को नहीं हुए। तो इन बात को विशेष ध्यान रखना है। अब जब आप बात करा खेत में सिंचाई की तो सिंचाई करनु पहले अपन वो ध्यान रखना है कि एक तो भूमि जिकी है एकदम समतल हो भी मैं खाडा नहीं होना चाहिए। कोई जगह जिकी है ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपने खेत में जगह ऊंची नीची है तो बिना किराए सू एक सी कर लिया और जिन्हें पानी जावे भी दिशा कानी थोड़ी सी ढलान दे दें जिकसू कि पानी सिंचाई के टाइम सही चाल तो रेवे और एक जगह रुके भी ना क्योंकि जे क्यारी आगू ऊंची हो सी तो बाकी अब क्यारिया ने अपने ज्यादा भरनी पड़ सी और पानी भी बिंग में बहुत ज्यादा भर जाएगा तो बीज क्यों हो सके फसल भी अपनी खराब हो जाए और पानी को भी जो है दुरुपयोग हो सी। किसान भाइयों आपने क्षेत्र की भूमि है बा रेतली भूमि है और बिंग में सिंचाई की बिया भी ज्यादा जरूरत रहे रेतली भूमि में और दूसरों के सिंचाई करना थोड़ो कठिन भी हो। तो आजकल तो थे जानो ही हो कि बहुत सारी सिंचाई पद्धतियां हैं या फुहारा सिंचाई पद्धति है या एक टपका सिंचाई पद्धति बोलना जी कहना आप बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी कह दें तो ए जी की सिंचाई पद्धतियां है अपन अपनानी चाहिए। फुहारा सिंचाई पद्धति में फुहारा शू सिंचाई होवे अपने जी रेतला धोरा है वहां पर आप कोई भी फसल बीजा तो भी मैं फुहारा शू सिंचाई करनी चाहिए। एक तो पानी की बचत हो और दूसरों की है फसल भी अच्छी हो और लाभ भी हो। टपका सिंचाई पद्धति में क्या है जी पाइप हो पाइप में छोटा छोटा सुराख करके और बाना आप कनेक्शन बामा कर दें तो भी के है जिका पौधा है बांगी जड़ा में टपको टपको या बूंद बूंद पानी है वो जानते रहे इसमें एक तो क्या पौधे की नमी बनी रहे और पानी की भी बहुत बचत हो। फुहारा सिंचाई पद्धति या जी टपका सिंचाई पद्धति है लगभग एक तिहाई पानी की बचत हुए। और कई बारी किसान भाइयों आपा देखा कि पानी की कमी की वजह आपा ने भूमि जिकी है वह खाली रखनी पड़े सारी भूमि में आपा बीजांत कौन कर सका। अगर आपा ये सिंचाई पद्धतियां अपना से तो आपा

0: भी भूमि में बीजांत कर सकें, क्योंकि अपने गंज की पानी की बचत होगी तो वह खाली भूमि में जिसके आप बीजांत कर सकें वह भी में काम आ जाएगी। इस अलावा अपन फसल में जितनी पर्याप्त तो मात्रा में सिंचाई की जरूरत हो बितो ही पानी अपन फसल ने देना चाहिए, बित्ती ही सिंचाई करनी चाहिए। कई बार आप क्या है पानी अपने कन भरपूर हो या कई बार दूसरी बारी टाइम छू आ जाए तो आप क्या है जरूरत के बिना भी आप सिंचाई कर दें फसल ने, तो ये बात को भी खास ध्यान रखना, बिना जरूरत के सिंचाई नहीं करनी है फसल ने। और वो जो को पानी फालतू है बी टाइम अपन की है कोई डिग्गी या कोई तालाब खेत में बना लेना चाहिए, और वो डिग्गी या तालाब में जो को फालतू पानी है भी नहीं अपन इकट्ठो कर लेना चाहिए, और वो आगे जो को अपने जरूरत के टाइम काम आसी और बिना उपयोग कर लेना चाहिए। इसमें अलावा किसान भाइयों बिरखा के टाइम भी अपन ने ध्यान रखना है, बिरखा के टाइम में एक तो बिया भी सिंचाई की आवश्यकता कम होवे और दूसरों के है बिरखा के टाइम में जो बिरखा को पानी है वो तालाब या डिग्गी में इकट्ठो कर लेना चाहिए, जिसको कि अपन आगे ना अपनी जरूरत के अनुसार आप भी ना काम में ले सका। इन अलावा आप जो बाग की बात करा तो बाग में थन ध्यान ही है कि बाग जी का पौधा है वह एक कतार में एक ही दिशा में आप लगावा, तो बी हिसाब छू ही अपन बी दिशा के हिसाब छू जिका पौधा है बंगे पौधा के आसपास एक क्यारी बना लेनी चाहिए, और बी क्यारी सुई जिकी है सिंचाई अपन करनी चाहिए। बी सु एक तो पौधा ने पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जिसी और पानी की बचत भी हो सी, क्योंकि जी आप क्यारी ना बनावा तो अपन पूरे खेत में पानी देना पड़े और बाग में अपन पूरे खेत ने भरने की जरूरत को नहीं होवे, तो सिर्फ क्यारियां से सिंचाई करनी चाहिए। इस अलावा अपन खेत में कोई जगह फालतू का खरपतवार है जंगली झाड़ियां है घास फूस है बाने भी खेत से निकाल के साफ रखना चाहिए। बीच में अपन के फायदे है कि एक तो जिका घास फूस है वे भी फसल के सागे सागे पानी पिए तो अपन पानी की जगह खपत अब ज्यादा हो सी, और अगर आप घास फूस साफ रखांगा तो अपने के पानी की खपत कम हो जाएगी, और दूसरों के घास फूस और झाड़ियां होने की वजह क्यारियां में पानी जो है धीरे धीरे चले ज्यादा पानी की जरूरत पड़े सिंचाई के टाइम, तो अपन खेत ने एकदम साफ सुथरो रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों अपना जिका कृषि विशेषज्ञ है टेमो टेम बांकनू सलाह लेते रहना चाहिए, बे थाने नई नई पद्धतियां के बारे में जागरूक करे पद्धतियां के बारे में बतावे, और थाने वो भी बतावे अपन की जिकी किसी फसल में कितना पानी की जरूरत है कितनी सिंचाई जिकी अपन पर्याप्त रहेगी, तो बीच में अपन जिको पानी अपन बिना जरूरत के जिके आप कई बार पानी दे दें फसल ने वो भी बचत हो जाएगी, तो पानी की इतना बचत कर सका। तो किसान भाइयों सगली बात को अपन ध्यान रखना है और सिंचाई जल को सदुपयोग करना है। अब मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: कृषि में जल संरक्षण, अभी आपने जानकारी ली कार्यक्रम खेती रमास्ते में। आइए अब सुने लोक भजन, कलाकार हैं राम निवास राव।
2: बचाले मारी माई बटावू ओ आग्यो ले बने ले ए माने अब के

जन दरिया बंदन करे नमो नमो भगवंत। सतगुरु ऐसा ना कीजिए जैसे झाड़ी मोर ऊपर लाली प्रेम की तो भीतर बड़ा कठोर।

चेत सके तो चेती बाबिरा चेत सके तो चेती बाबिरा ओ घंटी लारी ली बाजी ओ मनी मेरा

इसी लोग भजन के साथ ही आज का कार्यक्रम खेती नमस्ते अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 7:20 हुए कार्यक्रम सुने मानस गान भाग संख्या 244।

श्री राम, सीता और लक्ष्मण अत्र ऋषि के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि ने भक्तिपूर्वक श्री राम की वंदना करके उनसे अपने चरणों में अटूट अनुराग देने की प्रार्थना की। शीलवती तथा विनम्र सीता जी ने ऋषि पत्नी अनुसूया के चरणों में सिर नवाकर उनका आशीर्वाद मांगा। ऋषि पत्नी सीता जी की विनम्रता देख अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। अनुसूया जी ने मधुर और कोमल वाणी में सीता जी के स्त्री धर्म पालन का बखान किया।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे मानस गान भाग संख्या 244। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। कार्यक्रम सुने सुप्रभात।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, बात करें सबसे पहले योग, व्यायाम और इसके लाभ। श्रोताओं, ये हम सभी जानते हैं कि योग व्यायाम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो शरीर में ताकत, लचीलापन, संतुलन बनाती हैं, साथ ही तनाव कम कर मन को शांत करती है। नियमित अभ्यास से हृदय रोग, मधुमेह, गठिया जैसी बीमारियों से बचाव होता है और जो हमारी हमारा जो पाचन तंत्र है वो दिन ब दिन सुधरता है। योग आसन मांसपेशियों में तनाव कम करते हैं और जोड़ों की गति में सुधार करते हैं। और जो शारीरिक दिक्कतें एक उम्र के साथ आती हैं, उन्हें धीरे धीरे वो कम करती हैं। जैसे कमर में दर्द को कम करने के लिए हमें योगाभ्यास करना चाहिए। गतिशीलता में सुधार हमें दिन ब दिन मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसिक शांति और हृदय हमारा स्वस्थ रहता है। यह शरीर के संतुलन

और बैठने खड़े होने के तरीके को सुधारता है। तेज चलना, दौड़ना या तैरना जैसे व्यायाम हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। और व्यायाम हमारे शरीर को, जो शारीरिक गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित रखता है, वजन कम करता है, रखता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। नियमित व्यायाम से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के लक्षण कम होते हैं। शारीरिक गतिविधि ऊर्जा बढ़ाती है और बुढ़ापे के लक्षणों को जल्दी आने से रोकती है। श्रोताओं, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट, सप्ताह में 5 दिन मध्यम गति की शारीरिक गतिविधि यानी कि व्यायाम करने की सलाह हमें सुझाते हैं हमारे जो भी शारीरिक चिकित्सक हैं। और वे बताते हैं कि जितना हम व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करते हैं, सुबह जल्दी उठना, नियमित नित्यक्रम में शामिल करना, और सबसे बड़ी बात है व्यायाम को हमें हमारी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमें समय मिल नहीं पाता है, फिर भी हमें अपने शरीर के लिए कुछ समय निकालना चाहिए और व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी हमें करना चाहिए। तो आइए सुने ये गीत।

श्रोताओ, गीत आपने सुना आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाज़ में। गीतकार प्रसून जोशी और संगीत आदेश श्रीवास्तव का था। आइए बात करें, क्रोध मनुष्य का शत्रु। श्रोताओ, निश्चित रूप से मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है, जो विवेक को नष्ट कर विनाश की ओर ले जाता है। ये जलते हुए कोयले के समान है, जिसे उठाने वाला व्यक्ति दूसरों से पहले स्वयं को जलाता है। क्रोध न केवल रिश्तों में दरार डालता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले जो बात है, क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिससे वह गलत निर्णय ले बैठता है। क्षण भर का जो क्रोध है हमारे अंदर चलता है, वो बड़ा ही घातक होता है। यह शरीर में रहकर शरीर का ही विनाश करता है, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी में लगी आग उसे ही जलाकर राख कर देती है। इसे हृदय गति बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है, तनाव पैदा होता है और शारीरिक जो समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। श्रोताओं, क्रोध की मुक्ति के उपाय में हम ये बात कर सकते हैं कि धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है, जो क्रोध को नियंत्रित करता है। शांत मन से सोचने पर ही क्रोध को वश में किया जा सकता है। यदि शत्रुओं से मुक्ति पाना है, तो सबसे पहले अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीख लें। क्रोध को त्याग कर धैर्य को अपना कर ही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता में क्रोध को सीधे संबोधित करती हैं, क्योंकि क्रोध ही विनाश का द्वार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को नियंत्रित न करने पर क्या होता है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति में गड़बड़ी आती है और मनुष्य विनाश की ओर चला जाता है। जाहिर सी बात है श्रोताओं की,

क्षण भर का जो क्रोध है, जो हमें गुस्सा आता है, उसमें हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होना का सीधा मतलब है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि जीवन पर्यंत उसका उसकी भरपाई हम नहीं कर पाते हैं। तो हमारे मन को शांत रखें, क्रोध जब आए तो ईश्वर को याद करें, या फिर संगीत सुने और अपने मन को एक अलग स्थिति में ले जाएं, ताकि जो हमारा क्रोध है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा और हमारा मन भी शांत हो जाएगा। आइए सुने ये गीत और बात हम और भी करेंगे।

तो गीत आपने सुना, स्वदेश फिल्म से हमने लिया था और इसे गाया था उदित नारायण हरिहरन और कैलाश खैर ने, और इस गाने की धुन तैयार की थी जावेद अख्तर ने और संगीत AR रहमान का था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुप्रभात कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। अब बात करें जल्दबाजी कितनी घातक है। जल्दबाजी यानी कि हरी सिकनेस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है, जो तनाव, हृदय रोग, पाचन विकार और दुर्घटनाओं का कारण बनती है। ये कार्यक्षमता कम करती है, रचनात्मकता को रोकती है और रिश्तों में तनाव पैदा करती है। लगातार जल्दबाजी से कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है, जिससे अनिद्रा और दीर्घकालिक बीमारियां हो सकती हैं। जल्दबाजी में खाने से मोटापा, डायबिटीज, एसिडिटी जैसी समस्याएं आती हैं और पाचन अग्नि को कमजोर करता है, पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। श्रोताओं, यह व्यवहार में चिड़चिड़ापन, एग्जाइटी और हर समय हड़बड़ाहट की जो स्थिति है वो बड़ी ही खराब स्थिति होती है, क्योंकि उस समय जो काम हम करते हैं वो बड़ा ही खराब ही होता है, सही होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि वो जल्दबाजी में किया वो काम। कहते हैं जल्दबाजी काम शैतान का है, तो जल्दबाजी में हम कोई भी काम न करें, एक विवेक से काम करें, किसी भी काम को करना चाहे तो। काम में जल्दबाजी करने से त्रुटियां, दुर्घटनाएं और चोट लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। समय की कमी का बहाना बनाकर आप प्रियजनों के लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे भावनात्मक दूरी आ जाती है।

जल्दबाजी में किए गए निर्णय गलत साबित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता खो देता है। और इससे हम बचें तो अच्छी बात है हमारे लिए। एक समय में एक ही काम करें, अगर हमें काम करना है जल्दबाजी अगर नहीं करनी है तो एक समय में एक ही काम हम कर सकते हैं। बीच में ब्रेक ले लें, आराम करें, कामों की सूची बनाकर उन्हें व्यवस्थित करें कि दिन भर में मुझे क्या काम करने हैं, उसकी सूची बना लें तो एक दिनचर्या सेट हो जाती है, काम हमें किस प्रकार करना है। तो जल्दबाजी में एक धीमा जहर है, एक तनाव है जो जीवन की गुणवत्ता को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, तो इसे हमें बचना है। और जो भी काम करें बड़े ही संयमित तरीके से करें, क्योंकि जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसकी एक वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू अगर गिरती है, अगर वो मूल्य गिरता है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। तो जीवन में अंतरंग जो भी आनंद है वो लीजिए, पर काम जो है वो बड़े ही संयमित तरीके से हमें करना चाहिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोता, गीता आपने सुना है, सिंग इज़ किंग फिल्म से हमने लिया था। रात फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इसी गीत के साथ ही सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर आप सुनेंगी समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: का आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
3: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें

0: इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रूपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रूपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रूपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रूपये और डीजल 93.14 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रूपये और डीजल 95.13 रूपये प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रूपये और डीजल का मूल्य 95.35 रूपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई है, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा 1000

0: हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वह यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी एसआईआर, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि भारत की जेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सेंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन-उल-अक़वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तश्दीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इमकान ग्रिड इंटर कनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तिजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबूजहबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ 10 साल मुआहदा किया था, जिसके तहत 2028 से हर साल 5 लाख टन एलएनजी फराहम की जाएगी। इस मुआहदे से भारत को कीमतों में ज्यादा इस्तेहकाम हासिल होगा, क्योंकि इससे स्पॉट मार्केट पर उसका इन्हिसार

0: जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात के सॉवरन वेल्थ फंड्स भारत के शमसी तवानाई के बुनियादी ढांचे में फाल तौर पर सरमायाकारी कर रहे हैं, जबकि भारत का शांति एक्ट जौहरी तवानाई के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए इम्कानात पैदा करता है, जिनमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं। इस तरह इन शोबों में भी इश्तराक के नए मौके पैदा हो रहे हैं। तरफेन तवानाई से मुतालिक लेन देन को रुपये और दिरहम में भी फरोग दे रहे हैं, जिससे बाहमी तजारत का इन्हिसार डॉलर पर कम से कम हो सके। तेल से एलएनजी तक और माहौल के लिए साजगार तवानाई से जौहरी तवानाई तक भारत यूएई शराकतदारी बाहमी इश्तराक के नए मौके पैदा कर रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमन अली खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल भारत की सरबराही में ब्रिक्स कसीर जहती को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इख्तिसादी इस्तेकाम को परवान चढ़ाने और मजीद जामे हिकमत अमली बनाने के लिए मिलकर काम करेगा। ब्रिक्स मुमालिक के वज़राए खारिजा और वफूद के सरबराहों के साथ बातचीत करते हुए, जिन्होंने नई दिल्ली में जनाब मोदी से मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को फरोग देने और आलमी खित्ते जनूब की उमंगों को आवाज देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग के दौरान हुई, जो कि नई दिल्ली में जारी है। इससे पहले ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही खिताब में वज़ीर खारिजा डॉ एस जयशंकर ने कहा था कि अमनो सलामती आलमी इस्तेकाम के लिए मरकजी हैसियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़ात भी बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत को ही उजागर करते हैं। आलमी सतह पर तवानाई की बढ़ती कीमतों के दरमियान तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फी लीटर का इजाफा किया है। नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 87.67 रुपये से बढ़कर 90.67 रुपये फी लीटर हो गई है। इसी तरह मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर 106.68 रुपये फी लीटर, जबकि डीजल की 93.14 रुपये फी लीटर हो गई है। कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 108.74 रुपये, जबकि फी लीटर डीजल 95.13 रुपये हो गया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर 100 किलोग्राम की हद मुकर्रर की है, जो जेवरात के बरामद कुनिंदकान को सिफर ड्यूटी पर खाम या इनपुट मटेरियल दरामद करने की इजाजत देती है। एक अवामी नोटिस में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने कहा है कि सोने की दरामद के लिए पेशगी इजाजतनामा जारी किया जाएगा, जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा 100 किलोग्राम पर छूट मिल सकेगी। पेश है हमारे नामा निकार की ये रिपोर्ट।
2: DGFT ने पहली दफा दरखास्त देने वालों के लिए उनकी ऑपरेशनल हैसियत और सलाहियत की तस्दीक के लिए मैन्युफैक्चरिंग सहूलियात का फिजिकल मुआयना लाजमी करार दिया है। इसमें मजीद कहा गया है कि सोने की दरामद के लिए किसी भी तरह का पेशगी तस्दीक नामा उसी वक्त जारी किया जाएगा जब बरामदात का 50% हिस्सा मुकम्मल कर लिया गया हो। DGFT ने कहा है कि डायरेक्टरेट का मुतल्लिका अफसर DGFT को एक माहाना रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें पेशगी तस्दीक नामा जारी करने से मुतल्लिक तमाम मालूमात होंगी। इससे पहले इस स्कीम के तहत सोने की दरामदात पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। नई दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
1: यूरोपीय यूनियन के बाजारों में एक्वाकल्चर से मुतालिक मसनूआत की मुसलसल बरामद के लिए नजरसानी शुदा मुसविदे की फहरिस्त में भारत को शामिल किया गया है। सनत व तिजारत की वजारत ने कहा है कि इससे पहले के कवानीन में जवाबित में भारत को उन 3 ममालिक में शामिल नहीं किया गया था, जो सितंबर 2026 से जानवरों से बनाई जाने वाली मसनूआत जिन्हें इंसान इस्तेमाल करते हैं यूरोपीय यूनियन को बरामद करने के मजाज थे। इन जवाबित के तहत बरामद कुनिंदा ममालिक पर लाजिमी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यूरोपीय यूनियन को भेजी जाने वाली अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली मखसूस अदविया एंटी माइक्रोबियल से पाक हों। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जबरन पैसे वसूल करने का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से कोलकाता में CGO कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने

0: ने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था। ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरूनी मुल्क तैयार करदा पांचवें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयारा प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनाक़िद हुई जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी स्कूल तालीम के सेक्रेटरी इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मस्कूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराए ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोजा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है, जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सर डाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमाए मौसमियात ने अंडमानो निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाओ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में असलाहत के लिए कदम उठाएं, एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है कि इंतखाबी कमीशन ने 16 रियासतों और 3 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में खसूसी जामे नजरसानी कराने का फैसला किया। اخبارات نے دفاعی مینوفیکچرنگ شعبے میں خود انحصاری پر زور دینے کے وزیر دفاع راجنا

0: मोहम्मद सिंह के बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारों ने मुल्क में खाम तेल और कुदरती गैस की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के मुअस्सर इकदामात को भी नुमाया जगह दी है। अखबारात में शाया होने वाली बैनुल अक्वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का दौरा, शी जिनपिंग ने कहा कि अमरीका और चीन के तल्लुकात आलमी इस्तेहकाम के लिए अहम हैं।
1: और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के DCP शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 8:45 हुई हैं। कार्यक्रम आप सुने सुगम संगीत। आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे हैं विपिन सचदेवा के गाए कुछ भक्ति गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। और इस कार्यक्रम में आज आप विपिन सचदेवा के गाए कुछ भक्ति गीत सुन रहे हैं।

0: इसी भक्ति गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न हो रहा है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत गढ़ है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर हम सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा करेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री श्री मोदी आज अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हो रही है। भारत का यूएई को निर्यात 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसके साथ ही यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देश सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। श्री प्रधान के आवास पर हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में उच्च शिक्षा सचिव, विद्यालय शिक्षा सचिव, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक, सीबीएसई के अध्यक्ष और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्तों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की दूसरी बार की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 21 मई तक ये प्रदेश के 90 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। इसके लिए राज्य के करीब 1,300 स्कूलों में 21,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए त्रिस्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया गया है। वहीं आरबीएसई की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं भी कल से शुरू हो गई। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों

0: भी ईंधन के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल 3.25 रुपए और डीजल करीब 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करते हुए प्रदेश में ईंधन की बचत और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय किया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने एस्कोर्ट सुरक्षा छोड़कर ईंधन बचाने का संदेश दिया। श्री चौधरी ने कहा कि ईंधन की बचत आज के समय की जरूरत है, हर देशवासी को इसमें अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
1: ईंधन को बचाना है, ये हर भारतीय को ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं राष्ट्र हित के लिए कहते हैं, आज मैंने तय किया है कि जो एस्कॉर्ट गाड़ी एक चलती है वो बंद, सिर्फ जो मेरी गाड़ी है ये गाड़ी जो मुझे मिली हुई है उस गाड़ी का मैं उपयोग करूँगा और एस्कॉर्ट गाड़ी इसका उपयोग नहीं करेंगे ताकि ईंधन की बचत हो।
0: राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजे संजीव प्रकाश शर्मा ने भी अपने वाहन के साथ चलने वाली एस्कॉर्ट कार को छोड़ दिया है। इसी तरह निचली अदालतों में कई मजिस्ट्रेट कार पुलिंग कर कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई गंगा दशमी से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। प्रदेश भर में ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस तक चलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में कल इस बारे में अहम बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हर जिले में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण का काम मिशन मोड पर किया जाएगा। अभियान के दौरान श्रमदान, स्वच्छता गतिविधियां, पौधरोपण, जल स्रोतों की सफाई, प्रभात फेरियां और जागरूकता रैलियां आयोजित होंगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के राज्य स्तरीय समापन समारोह के साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का राज्य स्तरीय शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को जल जीवन मिशन 2.0 के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने कोटा में न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और प्रसूताओं तथा उनके परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पिछले दिनों हुई प्रसूताओं की मौत और तबीयत बिगड़ने की घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की बारीकी से जाँच करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली एम्स की टीम भी आज कोटा में इस प्रकरण की जांच करेगी। अंतिम रिपोर्ट मिलने पर ही घटना के सही कारणों तक पहुंचा जा सकेगा।
2: जो भी है, चाहे दवाइयों में है, चाहे साफ सफाई में, जो भी इसका तो कॉज मालूम करेंगे, गंभीर विषय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और अगर इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम उस पर करेंगे और जो भी दोषी है उसके अगेंस्ट केस लगाएगा। तो डेथ हुई उनके परिवार को मेरी तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंस में देना चाहता हूँ कि बहुत दुखद घटनाएं हुई और हम सब इसमें हमारे खुद की आंखों में आंसू लगाए।
0: पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना हुआ है। इससे तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। हालांकि गर्मी का असर बरकरार है। कल हनुमानगढ़, फलौदी, बीकानेर, बारा और राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में हल्की बारिश हुई। जयपुर में भीषण गर्मी के बाद शाम को तेज रफ्तार हवाओं और गरज के साथ रुक रुक कर करीब 2-3 घंटे बरसात का दौर चला। कोटपुतली बहरोड में देर शाम चली धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ गिरने से यातायात बाधित हुआ। उधर पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से पानी की फुहारों से लोगों को गर्मी से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में दिन का पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया। चित्तौड़गढ़ और

0: जालौर में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार जताए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर, पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी पहुंचेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। प्रदेश में भूजल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू होगा। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में कई स्थानों पर तेज रफ्तार हवाओं के साथ आंधी बारिश का दौर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9:10 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने मरुमंगल, कलाकार है मीनाक्षी शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, मरुमंगल कलाकार है मीनाक्षी शर्मा, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे मरमंगल कलाकार थी मीनाक्षी शर्मा। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। कार्यक्रम आप सुने फिल्म संगीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अंतराल से पहले गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था अंश, और इसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक ने, गीतकार समीर थे और संगीत नदीम श्रवण का था। आइए अब सुने हीरोज फिल्म का ये गीत सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। इसकी धुन तैयार की है जैलेश शिरवानी ने और संगीत है साजिद वाजिद का।

अब सुने, कुमार सानू वाले अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम। फिल्म का ये गीत आप सुने, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है और संगीत अनु मलिक का है।

श्रोताओं, गीत आपने सुना खामोशी फिल्म से हमने लिया था और इसे गाया था कविता कृष्ण मूर्ति और कुमार सानू ने। आइए अब सुने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 10 बजे हैं, कार्यक्रम सुने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 10 बजे हैं। कार्यक्रम सुने गा मेरे मन गा।

अमित कुमार कुमार की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना तेरी कसम। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत आर डी बर्मन का था। आइए अब सुने किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गाइड का यह गीत। गीतकार

मन्ना डे और उषा मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम था दिल की राहें और गीतकार नश्क लायलपुरी थे और संगीत मदन मोहन का था। आइए अब सुने आंचल फिल्म का ये गीत। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ में, गीतकार प्रदीप हैं और संगीत सी रामचंद्र का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गा मेरे मन गा, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। इस समय ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आइए अब सुने आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म रॉकी का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुने मिलन फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लाल पत्थर। अभी आपने इस फिल्म से किशोर कुमार को सुना। गीतकार देव कोहली और संगीत शंकर जयकिशन का था। आइए अब सुने फिल्म

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गा मेरी मन गा, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए आप सुने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में अंगार फिल्म का ये गीत। गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

गीत गाता चल। अभी आपने इस फिल्म में जसपाल सिंह और साथियों को सुना। गीतकार रविंद्र जैन थे और संगीत रविंद्र जैन का था। आइए अब सुने फिल्म उड़ान का ये गीत। इसे गाए अमित त्रिवेदी, अमिताभ भट्टाचार्य ने, और गीतकार भी अमिताभ भट्टाचार्य हैं और संगीत अमित त्रिवेदी का है।

श्रोताओं, फिल्म संगीत अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, पेश है प्रोग्राम गीतमाला।

गीतमाला के साथ मैं सुमन शेखावत हाजिर हूँ। आपके व्हाट्सएप मैसेज और आपकी फरमाइश हमें मिल चुकी है, जुड़े रहिए हमारे इस प्रोग्राम से।

श्रोताओं, सलमा आगा को अभी आपने सुना, फिल्म थी मजदूर। इस गीत को सुनना चाहते थे बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश, मदनलाल वर्मा, पांडेवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, गांव नथाना से हरजिंदर चिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाथली से गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। इसी गीत की हमें फरमाइश मिली थी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम नसरी।

परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर, और हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। प्रोग्राम की अगली पेशकश आंधी फिल्म से आवाज़ें लता और किशोर की सुनना चाहते हैं। सदर बाजार कुरावती से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है गांव जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारन की। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल रशीद, अनम अब्बासी और इनके साथ हैं यशफ अब्बासी। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव और हिमानी जाखड़। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा। व्यास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार साही, संतोष साही, राजश्री और गौरव साही। पदमपुर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। आप सभी को हम सुनवाते हैं आंधी फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, प्रोग्राम की अगली पेशकश की फरमाइश आप सबकी। गांव जोगीवाला से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। ये खत, माफ़ कीजिए, ये फरमाइश व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मिली है अनिल, मानसी, गौरव, कविता अरोड़ा, कीर्तिनगर, दिल्ली से। रमेश कुमार चक 6 MSR अनूपगढ़ से। श्री करणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहपुरा, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान, कार्तिक सैनी। टोरोवाल नवा शहर से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम और बेबी वामिका और वाणी थांदी। आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर का गाया ये गीत, फिल्म है मासूम।

शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोज़ी, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। सांगली जत शहर से अल्ताफ हज़रे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुबेहा नेवादा ज़िला गाज़ीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता, आशीष, चांदनी, विश्वजीत। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। ये फरमाइश हमें मिली है जाखोद राजस्थान से, शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक की। मदन गौरव लिखते हैं, माई रेडियो माई लाइफ, हमारा प्यारा AIR सूरतगढ़, लव लव लव यू। और मंजू शर्मा, शिव शर्मा, पूजा, आशु, आयुषी ने सूरतगढ़ से हमें फरमाइश भेजी है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। मरहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशफ अब्बासी और इनके साथ हैं रसीद वारसी। कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी और कृष्ण। और जालंधर से हमें फरमाइश मिली है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल सहानी की। पींगा वाला चौक गोराया जालंधर से। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को, फिल्म है बॉबी।

कार्यक्रम गीतमाला को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं अमानत फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। सुनना चाहते हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोज़ी पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फ़ातिमा खातून अंसारी, असलम अकरम और अल्ताफ अंसारी, डुमराव से डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और वसीम अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून, आफ्ताब मेहताब, मेराज कल्लू और मल्लू अंसारी, बठेना पाटन ज़िला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, सूरज कुशल वर्मा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, बेहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता प्रिया नैना,

हिमानी, शिवम जाखड़, जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, सना समा, हिना शकीला, जैस्मीन रजिया सुल्ताना, अख्तर अंसारी, सूरज मोहम्मद जावेद अंसारी, गांव सूलर ज़िला पटियाला से सनी कंबोज, मनिंदर तरसेम सिंह, जसविंदर कौर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, राही सरिता गंवाणकर, प्रणीता सिद्धांत, अर्जुन गंवाणकर और इनके साथ हैं टुक टुक, ये फरमाइश हमें मिली है गांव थोब ओसियां जोधपुर से श्रीराम जानी, धर्माराम भीखाराम गर्वित जानी की तरफ से, बोरसरा छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू, और फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी, शालिनी टिवानसी, वाणी खेड़ा, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और पूरा खेड़ा परिवार। आप सभी सुनिए अमानत फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को।

श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गीतमाला और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और तानिया नारंग, फवारा चौक सिरसला चूरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा और पूरा सोनगरा परिवार, गांव डांगरी जिला जैसलमेर से बाबूराम जयपाल, दिनेश चौहान, उगम सिंह भाटी, गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, नवीन मंदी, प्रियंका, सपना, नीतू और वेदांश जांगड़ा, गांव बनवाला हनवंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और पूरा मायल परिवार, गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सागर लखना दौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव साइना और निवान शर्मा, मंसूर नगर शाबाद पिहानी हरदोई से आलोक कुमार खरे और गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढूकिया, प्रमीला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढूकिया। साथ ही हमें 5 BNPM कीकर वाली जोड़ी से अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू की भी फरमाइश मिली है। आप सभी को हम सुनवाते हैं किशोर, माफ़ कीजिए, मुकेश का गाया फिल्म मर्यादा का ये गीत।

श्रोताओं, प्रोग्राम की अगली पेशकश जब जब फूल खिले फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सबके लिए। गांव अरायण से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल। रायसनगर से सुनील डाल, सोहनलाल जी, जांगीर, परवीन जी सरावगी, नरसी जी सीवर, चेतन राम जी, जोशन जी। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर। गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रंजीत राम किरोड़ीवाल। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा अब्बासी परिवार। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। गांव खोखरावाली से विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद, अनवर लुबना और आलिया अंसारी। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत।

श्रोता, हम कार्यक्रम सुन रहे हैं आप इस समय गीतमाला, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। श्रोता, हमें कुछ पत्र भी मिले हैं जो श्रोता हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्होंने जो पत्र हमें प्रेषित किए हैं। 32BB से सन्नी शिशपाल, रोशनी देवी, 18H केसरी सिंहपुर से गुरबचन सिंह भट्टी, घनजातियाँ से भगवान दास चौहान, गांव सातेस कीकरवाली से बलवंत राम, बाबा हंसनाथ, भालूराम, मदन काटपाल, धर्मपाल चोपड़ा, विद्या देवी चोपड़ा, गांव दोवी से ठाकुर रघुवीर सिंह, अजयपाल सिंह, शक्ति सिंह, गुरदीप सिंह, चंद्र सिंह सरा, मंडी गोलूवाला से ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान, हरिपुरा अबोहर से महेंद्र विश्नोई, वेद प्रकाश, अमित, अजय, ज्ञान, फाजिलका रोड मलोट पंजाब से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमनदीप, बलजीत गिल, दिशा मोहला, जगतार जग्गा, बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा और कुश मूणत, गांव 8S ढाणी से बाबूलाल, सुभाष झांझड़िया, बाबा मंगलनाथ, बाबा लालचंद और कृष्णलाल चावरिया, आप सभी को हम सुनवा रहे हैं दाग फिल्म का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

मुच्चू कैंचियाँ बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर करणवीर दीपेंद्र वीरेंद्र कुलदीप सीमू एकम दमन अभिजोत मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से आलोक कुमार खरे गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया श्रोताओं आपसे फिर से निवेदन है कि आप हमें एक बार ही फरमाइश भेजें गांव खारिया से हमें अभी जो फरमाइश मिली है वो हमने पढ़ दी थी प्रताप जी नागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया की। उससे पहले जो श्रोता है मंसूर नगर से उन्होंने पहले

फरमाइशी नाम हमें प्रेषित किए थे। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर, हरविंदर, कुलविंदर कौर मान। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोकर। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय महराज जहां। रजाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान ने हमें फरमाइश भेजी है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। राजावत कॉम्प्लेक्स एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और पूरा राजावत परिवार। जैसलमेर से विकास जागर जाखड़, तेज प्रताप जाखड़, विनोद और शिव भारी। गांव नाईवाला से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी। और कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी, इद्रिस, नुरू मीना, इरफान मीना और काशिफ मीना की फरमाइश हमें मिली है। आप सभी को हम सुनवा रहे हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गीत, स्वर मोहम्मद रफ़ी का।

फरमाइश मिली है हमें नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर, लखवाली हेड से मास्टर भवनलाल, कृष्णा विशाल, सौरभ ममता, राजबाला, नव्या लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संगरिया से मुकना

राम महावीर लोहरा, मानपुर साबित ज़िला मुरादाबाद से शेख ज़ियाउर रहमान, अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, आप सभी को हम सुनवाते हैं। प्रोग्राम के आखिर में अनाड़ी फिल्म का ये गीत आवाज़ लता मंगेशकर की है। साथियों, प्रोग्राम का ये आखिरी गीत सुनिए और सुमन को दीजिए अनुमति।

श्रोताओं, अभी आपने फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुना, गीतमाला। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। 12:30 पर सुगम संगीत और 12:50 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें चर्चा का विषय होगा बुआई से पहले करें खेत की तैयारी। दिन में 1 बजे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। 1:05 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। आज इसमें चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, गर्मी में पौधों की देखभाल, पौष्टिक नाश्ते से घटाएं वजन और आम से बनाएं बेहतरीन व्यंजन। दिन में 2 बजे अंग्रेजी समाचार और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:30 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले की जाएगी।

शाम 5 बजे युवा साथी सुन सकते हैं कार्यक्रम युववाणी। आज चर्चा के विषय होंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, ग्रामीण विकास में युवा, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, नेत्रदान, महादान और साथ ही आज के इतिहास पर भी चर्चा की जाएगी। शाम 6 बजे कार्यक्रम विवरण 6:05 पर सिराय के प्रसारित की जाएगी। शाम 6:30 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किए जाएंगे। संध्या 7 बजे किसान भाइयों के लिए प्रसारित किया जाएगा उनका अपना कार्यक्रम चौपाल। आज आप सुनेंगे गीतारो गजरो, साथ ही बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। 7:45 पर फिल्म संगीत होगा। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत में कुछ गजलें सुनिएगा और रात्रि 9:30 पर आप सुन पाएंगे हमारा साप्ताहिक पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी खुशबू।

रात्रि 10:30 पर फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। ये था कार्यक्रम विवरण। अभी आपने कार्यक्रम विवरण सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

रिफ्यूजी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी अलका याग्निक और सोनू निगम की। और लीजिए अब सोनू निगम के साथ श्रेया घोषाल को सुनिए, फिल्म का नाम है दबंग।

ऐश किंग और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी बॉडीगार्ड। प्रोग्राम सैनिकों के लिए समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश जब वी मेट फिल्म से, आवाज़ उस्ताद राशिद खान की।

श्रोताओं, अभी आपने कार्यक्रम सुना सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत।

श्रोताओं, इस समय आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सुगम संगीत, और इसे प्रसारित किया जा रहा है आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। प्रोग्राम की अगली पेशकश जगजीत सिंह की आवाज़ में कलाम कतील शफाई का।

0: अभी आपने सुगम संगीत सुना। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान। आज इसमें जानकारी का विषय है मिट्टी जांच और इसके फायदे।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करां खेती पाती की तो ई टाइम आप कई तरह का काम धंधा करा। जिया जिया आप खेती में नुआ नुआ तौर तरीका अपना के खेती करन लाग रहा हाँ, बिंगे हिसाब से थोड़ो ध्यान माटी का नहीं दे लेवा तो ज्यादा फायदा वाली बात है, क्योंकि धीरे धीरे पानी को स्वाद बदलने गस आ गए। पानी कम भी होवन लाग रही है और जको जमीन में पानी बचे है वो खारो होने लाग रही है। आपने हनुमानगढ़ गंगानगर अरे अनूपगढ़ क्षेत्र में जमीन के पानी छू खेती करता आया हाँ और भांत भांत की फसलों की बीजांत करके अच्छो मुनाफो है अच्छी आमदन भी लेता आया हाँ। पर अब धीरे धीरे खाद बीज भी आपकी रंगत बदल लेनी है। बीज ज्यादातर हाइब्रिड आवन लाग गयो जका जमीन सारू आपको उत्पादन देवे। फिर भी समय के सागे सागे आपा ने भी खेती का तौर तरीका बदलना पड़सी। अब किसान भाई कोई भी

फसल की भी जांच करे तो सहसु पहली माटी जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने ही क्षेत्र की माटी एक जैसी है कोनी। कठई खारी है, कठई ठीक ठाक है, कई जिग्या उसर और लवणीय भूमि है, तो बी जिग्या के हिसाब से फसल की भी जांच करनी है और माटी जांच करवा के फिर माटी की गुणवत्ता के हिसाब से जकी फसल माटी ने माने बी किस्म और बाई फसल आपा ने भी जांच करनी है सा। आपा लाडले कई साल छू एक दो तरियांगी फसलां भी जांच करता आया हाँ और आपा बिना माटी पानी जांच करके फसल भी जांच करता रहे हाँ। इंशु माटी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को भी पूरा ध्यान जे ना आए तो फिर फसल कमजोर तो हो सी ही, आपा ने नुकसान भी घणो सारो होवेगो, क्योंकि आप बात थे भी जानो कि पौधे ने विकास के खातर 19 पोषक तत्वों की जरूरत पड़े और कौन सा पोषक तत्व कम है और कौन सा ज्यादा है और कौन सा पूरी मात्रा में माटी में मौजूद है, इन बात को पतो आपा माटी जांच करके ही लगा सका। भाई लोगों अब बात करा माटी परीक्षण कद करवानो है, क्योंकि माटी जांच को भी एक टाइम होवे और तौर तरीका होवे। किसान भाइयों सामान्य रूप से माटी जांच खेत तैयारी के टाइम यानी फसल बुवाई से पहली करवानी चाहिए, ताकि फसल भी जांच से पहली जकी माटी में पोषक तत्व कम है वहाँ पोषक तत्वों की पूर्ति आपा टाइम से पहली कर सका। बिया विशेष परिस्थिति में खड़ी फसल से भी माटी का नमूना लेके माटी जांच आपा करवा सका। जका किसान भाई बागवानी वास्ते माटी जांच करवानी है वे बाग या पौधा रोपण से पहली ही माटी जांच करवा लेवे, ताकि माटी की गुणवत्ता के हिसाब से पौधा और बागवानी को चुनाव कर सके। अब सवाल वो है कि माटी का नमूना लेना किया है यानी के तरीका से नमूना इकट्ठा करना है। तो भाई लोगों माटी का नमूना लेने खातर फावड़ो खुरपी या लकड़ी प्लास्टिक को कोई संज लेगे फिर ही माटी पटनी है। माटी इकट्ठी करने वास्ते प्लास्टिक को बट्ठल काम में लेवा जको साफ सुथरो हुए। जब आपा नमूना खातर माटी भेड़ी कर लेवा तो नमूना भेजने खातर कपड़ा की या प्लास्टिक की साफ सुथरी थैली में इकट्ठा करना है। लेकिन किसान भाइयों नमूना लेने से पहले नमूना खातर जिग्या को चुनाव भी सही तरीका से करनो है, क्योंकि कई किसान भाई बिना जानकारी नमूना गलत तरीका से और गलत जिग्या से इकट्ठा कर लेवे जिसु परिणाम जको नमूना को आनो हुए वो सही आवे कोनी। इन वास्ते जद भी आपा माटी का नमूना लेवा तो जिग्या को भी पूरा ध्यान रखना है। नमूना आपा इसी जिग्या से लेवा जठे माटी पूरा खेत को प्रतिनिधित्व करती हो, यानी आपा इसी जिग्या को चुनाव करा जठे से नमूनो लेने से कई बीघा को अंदाजो लाग जाए कि माटी में किसा पोषक तत्व कितना है। जे किसान भाइयों माटी की दशा बनावट ढाड़ू है या दोष है तो आपा ने नमूना भी अलग अलग जिग्या से लेना है, और जठे रास तो है या छोटी मोटी पगडंडी है या खाड़ो है पुरानी मेड़ है या जठे खाद को ढेर है बठे से भी माटी का नमूना नहीं लेना चाहिए और पेड़ पौधा के नीचे से भी आपा नमूना इकट्ठा कतई नहीं करना चाहिए। बरसात के तुरंत बाद और खाद छिड़कने के तुरंत बाद आपा ने नमूना इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो आ बातों को ध्यान रख के आपा ने नमूना इकट्ठा करना है। अब बात कर ले आपा नमूना लेने की विधि के बारे में, क्योंकि नमूना पूरी विधि से लेगे आपा जांच परख करवाशा तो आपा ने सही परिणाम मिलसी। इन वास्ते जकी जमीन से आपा ने नमूना लेना है 20 बीघा में 15-20 जिग्या पर निशान कर लेना है और 20 जिग्या के ऊपर से कचरो कंकड़ घास फूस साफ करना है। जकी जिग्या पर निशान लगावा 20 जिग्या पर कस्सी या खुरपी से 20 आकार को 6 इंच को गहरो खड्डो खोद लेना है और खड्डे की दीवार से ऊपर से नीचे तक समान मोटाई में माटी की परत उतार लेनी है। खड्डे से निकालेड़ी माटी ने साफ सुथरे बट्ठल कपड़े की थैली या बोरी पर इकट्ठो कर लेना है। इन तरह खेत के बाकी जिग्या से लेड़ा नमूना भी इकट्ठा करना है और नमूना ने साफ सुथरा कर लेना है, यानी माटी से कंकड़ पत्थर घास फूस निकाल के साफ सुथरा करना है। अब भाई लोगों जका नमूना इकट्ठा करे है बा नमूना ने यानी माटी ने एक वर्गाकार या गोलाई में फैला के 4 भागा में या हिस्सा में काट के आमने सामने का 2 भाग माटी आपने रखनी है और बाकी फेंक देनी है। किसान भाइयों ई प्रक्रिया ना आपा जब तक दोहराव करता रहे जब माटी को नमूनो लगभग 500 से 600 ग्राम तक रह जावे। अब ई नमूना ने आपा साफ सुथरी थैली में भर के थैली में किसान को नाम पतो बीघा नंबर लिख के हर थैली में रख देना है और थैली को बढ़िया तरीका से मुंह बंद कर देना है। पछे ही नमूना ने आपा प्रयोगशाला में जांच खातर भेजनो है। जका किसान सोरा या उसर भूमि से नमूना लेवन लाग रहे है वे भूमि में 500 सेंटीमीटर की गहराई से 4 नमूना लेना है। पहला नमूना 0-15 सेंटीमीटर, दूसरा नमूना 15-30 सेंटीमीटर से लेना है, तीसरा नमूनो 30-60 सेंटीमीटर, चौथा नमूनो 60-100 सेंटीमीटर तक आपने लेना है। बागवानी खातर 2 मीटर गहराई तक नमूना लेना है और 2 मीटर गहराई पर कोई पक्की परत भी नहीं होनी चाहिए। तो इन तरह माटी का नमूना

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि

0: वर्तमान में ओएमआर मोड में होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले साल से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी।
1: सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 77 पैसे

0: गौरतलब है कि नीट परीक्षा 2026 3 मई को हुई थी, किंतु पेपर लीक होने के कारण इसे निरस्त कर दिया गया। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गई है। प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। बढ़ी हुई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। ईंधन बचत अभियान के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय से श्री शर्मा ईवी वाहन में कार्यक्रम में पहुंचे। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।
1: राज्य में अभी तक 1,76,000 से अधिक उपभोक्ताओं के सोलर रूफ टॉप प्लग लगाए जा चुके हैं। राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के अंतर्गत राज्य में 250 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की जाएगी।
0: खैरथल तिजारा जिले को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए हो रहे कार्यक्रम से मुख्यमंत्री श्री शर्मा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव वीसी के जरिए जुड़े हैं। ईंधन बचत अभियान को लेकर जागरूकता संदेश देने के लिए इस कार्यक्रम में ये लोग वर्चुअल भागीदारी कर रहे हैं। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की आज 16वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्हें नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री शेखावत ने भारतीय राजनीति में सुशासन, संवेदनशीलता और जनसेवा की अमिट छाप छोड़ी। गरीब, किसान और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए उनका जीवन प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर श्री शेखावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा जिले के मांडल चौराहे पर आज एक तेज रफ्तार ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके साथ ले जाए जा रहे चोरी के आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और कुछ देर यातायात बाधित रहा। हादसे के शिकार पुलिसकर्मी चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाने में पदस्थापित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। अब बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घरांगण सुणनाळी सगळी भेणाने बाई केणांगा हिवडस्यू मोकळा मोकळा राम राम। तू भेणो थे सुणन लाग रहो थारो आप गो पसंदीदा कार्यक्रम घरांगण, जठे हुए घर परिवार री बात, संस्कारां री खुशबू और अपनत्व गो एहसास। तो मैं उथारी आपकी किरणा बाई और आज फिर आप लाया थार खातर ज्ञान मनोरंजन और जीवन से जुड़ी कामगी बातें। तो आज बढ़िया रहो मार सागे और सुनता रहो घर आंगन।

बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। सबसे पहले तो थाने अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की मोकड़ी मोकड़ी बधाइयाँ। और देखो, ओ जी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है नी, ओ हर साल के है कै आज के दिन ही, यानी कि 15 मई ने, देखो आखे जान माई मनायो जावे। बहनों, इन दिवस ने मनाने को मुख्य उद्देश्य है परिवार री महत्ता ने समझावणो। और देखो, समाज में परिवार की जिकी भूमिका है नी, बिना मजबूत बनावणो है। आपने तो देखो, राजस्थान री आपां बात करा तो अपनी संस्कृति में की है कि परिवार ना केवल देखो सागेरे नाले लोगों को समूह है, बल्कि अपने संस्कार, आपनों प्रेम, सहयोग और अपनत्व की जिकी पहचान है, भी कारण आपनों परिवार मान्यो जावे। आपने इत्थे कई जगह देखो अजे भी संयुक्त परिवार री परंपरा जीवित है। एक ही आंगण में दादा दादी और माँ बाप, भाई बहन और छोटा टाबरिया सब के एक हिल मिल गए, सागर रेवन लाग रहा है। और परिवार की सबसे बड़ी ताकत अपनोपन हुए। अपना बडेरा के है के वती के जिको परिवार एकजुट रहे नी, बठे सुख है जिको आप ही चाल गया वे। परिवार इंसान की देखो पहली पाठशाला हुए। टाबर सबसे पहली बेणो जिका संस्कार है आपके घर से सीखे है। बडेरा रो सम्मान करनो, सांच बोलनो, मेहनत करनी, दूसरा री मदद करनी, ये सारी बातां परिवार ही तो बेणो सिखावे है। माँ बाप जीवन में की है कि सारी बातां टाबरा ने अच्छी अच्छी बातां बतावे और सही राह पर लेके जावे। और बठे की है दादा दादी आपके अनुभव से जीवन में नई सीख देवण रो काम करे। और देखो बेणो, कोई टेम हो कोई घर का सारा लोग रात ने बेड़ा हो रहताई करता, एक दूसरे की सुख दुख पूछता, नानी दादी कनु टाबर आधी आधी रात तई कहानियां सुनता। पर आज के है कि आधुनिकता आई जीवन में की है कि मोबाइल होयो, इंटरनेट होयो और काम काज की व्यवस्था के कारण की है कि हथाइयाँ कहानियाँ सह की खत्म हो गया। इं कवा तो गलत कोनी उसी कि वो जो मोबाइल है नी, और रिश्ता रो प्रेम विश्वास, बडेरां गे हथाइयाँ, गीत भजन गाँव ती लुगाइयाँ, दादी नानी री कहानियाँ, सब कुछ खा गयो। अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपां ने याद करावे कि परिवार में ही टेम बितावणो बेचा ही जरूरी है। सागे बैठ के जीवणो, बडेरां री बातां सुननी, टाबरियां के सागे खेलनो, बारे मनरी सुननी, इसी छोटी छोटी बातां की है कि रिश्ता माई मिठास भरती वे। अपने देखो जिका तीज त्यौहार है, बे भी परिवार की एकता का प्रतीक मान्या जावे। होली हुई रे, दिवाली हुई, रक्षाबंधन, बैसाखी, लोहड़ी, ईद, ये सारा के है परिवारा ने जोड़न रो काम करे। मिलके पकवान बनावनो, गीत गाना और खुशियां बांटनी, ये सब परिवार की बहनों फूटरी परंपरा है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस आपा ने संदेश देवे कि चाहे दुनिया कितनी बदल जाए पर परिवार को महत्व है वो कदे नहीं घटे। परिवार ही तो ठिकाणो है जद मानस ने कह है कि साचो प्रेम सारो और बठे अपनायत मिले। देखो बहनों, कह मारो परिवार मारी ताकत, कह मारो परिवार मारी ताकत, प्यार सम्मान की सच्ची दौलत, मिलजुल रे वे जको घर बार, खुशियां शू भर जावे संसार, खुशियां शू भर जावे संसार।

मन ने शांति देवे और देखो वातावरण ने ठंडक भी पहुंचावे। इन वास्ते गर्मी में थोड़ी सावधानी रख गया अपने पौधा को स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए, वो अपने सगला को फर्ज है। क्योंकि देखो बहनों गर्मी तो बेजा ही है और गर्मी में अपन आपनों भी ध्यान रखना चाहिए। इन वास्ते के है जिको पौधो पौधा की बात कर लिया नी तो जिको पुदीनो है, पुदीनो तो बेजा ही अपने खातर के है फायदेमंद है। पुदीनो आप जी थोड़ी सी लागे डाली भी लगा दिया नी घरे तो वो सांगो पांग जिग्ञा में गिर ले वै नी। इन वास्ते ज्यादा कोई जिग्ञा की भी जरूरत को नहीं, अपन पुदीनों तो घरे लगा ही लेना चाहिए। जे पुदीने की पत्तियां सुखा गए बांगो अपना सुण चूर्ण बना छा में रेड़ गए पिया तो भी अच्छा हुए, या फिर पुदीने की मुट्ठी एक पत्तियां तोड़ गए बिंग में थोड़ी सी गुड़ की डली गाल गए, थोड़ा सेंधो नमक गाल गए, पानी गाल गए और अपा जे बिना मिक्सी में वो मिक्सर में एक गेड़ो लगवा लें तो वो गन्ने का जूस वर्गो बन जाए और गर्मी में अपा ने बचाए रखे। तो पुदीने की बात चलन लाग रही है तो आओ पुदीना आओ आप सुन लिया चोखो सो गाणो।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
5: बहनो थे सुनन लाग रहे हो थारो आप वो प्रोग्राम घर आंगन और मैं हूँ थारी बहन किरणा बाई. तो देखो बहनो बातों को क्रम जारी रखता आप बात करा के अपने खाण पीण की. तो देखो बहनो आप की है कि तावड़ा दिन गए अब सिरदारी में तो लोग है नी ब्रेकफास्ट यानी कि दिन गए की न की खा पी गए घर से बाहर निकले. पर आपने तो की है आप तो एक दिन गाली चाह लेवा और फिर क्या बाजा दौड़ करी रखा नी. और जन्ना ती दोपहर है एक कई बहना तो इसी है जी कि 12-1 बजे ती जाके रोटी जिम्मे है नी. तो की है कि आपने जिको सुबह को नाश्तो है नी वो आपने जरूर ही लेना चाहिए. भी काम तो सारे दिन यही चलती सी पर आपका स्वास्थ्य से बढ़ गए. देखो बहनों की कोनी हुआ है तो इन वास्ते के है कि नियम बनावा के दिन गए की चाह सागा आपने की न की खाणो ही खाणो है नी. और वो खाणो जे आप पौष्टिक हुआ है तो देखो कहो के सोने पर सुहागाली बात हो जाए. तो देखो बहनों भी दिन गए को नाश्तो कई लोग के सोचे भी आप नाश्तो करशा तो की है कई लोगों का वजन की प्रॉब्लम हुए भी बंगा इं हुआ भी हाँ मारू वजन बद जिसी मोटापो होने लाग रो है. तो देखो वजन घटाने खातर भी नाश्तो करनो जरूरी है क्योंकि जे भूखे पेट रह सो नी तो की न की है सारा दिन की इनकी खाए रख सो तो की इनकी सारा दिन खाए रखा नी तो भी कारण की है अपनो वजन बद ही बद है. तो इन वास्ते एक के है कि दिन गए को नाश्तो हमेशा करनो चाहिए. कभी भी भूल गए भी ने छोड़नो नहीं चाहिए. और तली भुनी चीज़ा तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए. दूसरी आपने जिकी प्रोटीन वाली चीज़ा हुए नी जिका ने आपको वजन कम करना है बने प्रोटीन वाली चीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए. क्योंकि देखो प्रोटीन वाली चीज़ा खाने से आपनों सारो दिन अच्छो निकल सी और जल्दी सी भूख कौन लगेगी क्योंकि भी कारण क्या प्रोटीन के कारण आपनों पेट भरियो भरियो रो है. और इन वास्ते क्या है जी प्रोटीन का जिका स्रोत है जी के दूध हो गयो रे दही हो गयो रे मूंग दाल का चिल्ला हो गया. देखो मूंग की दाल ने बेगे रात ने और दिन के बिन मिक्सर में कर गेर भी माँ जी हाँ थोड़े नमक मिर्च छोटो मोटो प्याज यो काट के रेड़ दिया रे है नी कोई टमाटर यो रेड़ दिया इन तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें भी माँ नाख देवा काट के और फिर भी ने किया तो है पर जी आप मालपुआ बनावा भी हिसाब से बुके है मूंग दाल को चिल्लो बन जाए और उबलेड़ा चीना और जिको अंकुरित अनाज है अंकुरित अनाज तो बहनों थे जानो ही हो भी आप की है पहले दिन बेगे रख देवा जे चीना होया रे मूंग होया रे मोठ होया रे अन्न जे आप बेगे रख देवा और दूसरे दिन सुती कपड़े में ही आप बांध के पोटली में और बिन गिले के रे रखा तो दो दिन में

एक दूसरे दिन तई तो वो इस सुन अंकुरित हो जाएगा, पर अंकुरित है बे कहीं अंग जच्चे कौन, यानी बे सीधा कच्चा खाया जच्चे कौन, तो इन वास्ते के थोड़ा सा बिन भाप लगा गया छितरिया, और बिन मापा कई तरह जी सब्जियां कच्ची सब्जियां जी टमाटर है रे, खीरो है रे, और प्याजी है रे, अन्न छोटो छोटो काट गए, नींबू छिड़क गए, और सेंधो नमक काली मिर्च छिड़क गए, खावे नहीं तो टाबरा ने भी वो बेजा ही स्वाद लग गया, और थोड़ी मात्रा में भी आप घरे दिनाला गाया गुया रखा तो दूध ने आप पाड़ गए पनीर, घर गो पनीर बना सका, तो पनीर भी बहुत अच्छ हो के है स्रोत है प्रोटीन गो, तो टाबरा ने किन्ने भी आप चीज़ खुआ सका। बिंग अलावा देखो आपा ने अपने खाने में ही है कि फाइबर वाली चीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करनी चाहिए, जियाँ के देखो दलियो हो गयो रे, अब जी को मोटो अनाज हो बेणो इंग माँ फाइबर धाप धाप गयो है, अब मोटो अनाज आपने छोड़ दियो, पहला लोग के मोटो अनाज ही तो खाता के कांतरे से बे जियाँ खींचड़ू है और लाबसी है दलियो है बनाए रखता, और वो ही दिन का खा गए कि खेतों का नहीं जानता, तो देखो बंग है शरीर अस तई भी सही पड़े है, आज तई जी का पहला बडेरा है नहीं बंग शरीर की अपना शरीर ओड कौन कर सके है नी, और देखो इन अलावा जियाँ सलाद है रे कोई आज मौसमी फल है, और जियाँ साबुत अनाज है अंग माई फाइबर प्रचुर मात्रा में हो, तो अंग चीज़ों को आपा ने खाना चाहिए, और देखो बहनों जी की तली बुनी चीज़ है नी बा कम से कम खानी चाहिए है, कई अंक के वह कह हाँ रे आ चीज़ बना लो रे कुरकुरा इसी चीज़ा खराब होकर तो बहुत ही खराब करे, कचोरी समोसा ज़्यादा मिठाई वाली चीज़ा या तेल वाली चीज़ा इं सू की है कई सो नास्तो करने से वजन बद है, और आप माने के इंगी चीज़ा हल्को और पौष्टिक नाश्तो करनो चाहिए, और मिठो तो कम से कम लेनो चाहिए, जो कि जिकी आ खांड हुए नहीं आ चर्बी बड़ा, और खांड तो बेनो की काम की कोनी, खांड की जगह आप माने की है कि मिसरी जिकी दागाली मिसरी हुए और जिया शक्कर होगी रे गुड़ हो गयो, ये इसी चीज़ा अपने काम में ही लेनी चाहिए, रसोई में अन्य चीज़ा देनी चाहिए, खांड तो अपने बरतनी नहीं चाहिए की भी चीज़ में, क्योंकि आजकल जितना भी रोग है नहीं बे खांड का कारण ही है, क्योंकि खांड में निरोई केमिकल है, धोड़ी खांड और धोड़ो जी को नून वो दोनों ही खराब करे, इन वास्ते के डलाड़ो सेंधो नून लिया गया और घर में रखना चाहिए, जहर बिन कूट गया अच्छी तरह पीस गए और मर्तबाना में भर लियो और बहुत ही सारे साल उपयोग करो, तो भी क्योंकि कई तरह की बीमारी आपने नहीं हुए ली, और देखो बहनों जी ये दुकान वाली चीज़ें नहीं आ सू तो परहेज रखो, कई लोगों ले रे जा ठंडो लिया रे कोई बटाऊ आ गया तो ठंडो लिया रे, इं कौन ठंडो इन्हों तो थे कि शिकंजी बना लियो, शिकंजी हुई रे शरबत हो अजकल तो घरे शरबत बने, ये देखो बाजार में शरबत आ बम की हुए केमिकल हुए नहीं रही, तो गुलाब का जिका पत्ता हुए बने सोना गुलाब का फूल लिया गए बंग पत्ता ने उबाल गए बंग रस काट गए बिंग मापा मिसरी धागा मिसरी कूट गए नाख दया और फिर बिना उबाले रखा रितो उबाला भी बो के जाडो जाडो जे चासनी सी बन जे भी टेम ताई, फिर भी नींबू निचोड़ गया दो और फिर आप बोतल में ठंडो हुए बाद बोतल में भर के रख लिया तो घर को शरबत तैयार हो जाए, और देखो वो की तरीके से खराब भी कौन करे, और गर्मी में किया भी शरबत का आपने फायदा ही फायदा है, और इन टाइम आपने पानी भी खूब पीनो चाहिए, जी हाँ सुबह उठ गए हमेशा है नहीं खाली पेट पानी पीड़ो बेजा ही गुण करे, जे न्यायो पानी भावे थाने तो सारों अच्छी बात है, क्योंकि जे आप न्यायो पानी पीसा नहीं तो पेट अच्छी तरीके से साफ हो जी, और आजकल घणकरी सी बीमारियां नहीं बेणो बे पेट के कारण ही है, जे पेट साफ नहीं हुई है तो गैस और देखो सिर दर्द जिसी इसी जिकी समस्या भी आपने आगे आती रहेगी, तो इन वास्ते की है कि आपको जिको पाचन है वो सही रहसी, आपने पानी जरूर पीनो चाहिए और टाइम पर आप नाश्तो कर लेना चाहिए, उठने के बाद की है कि खाली पहला तो लोग देखो चाह में रोटी चूर खा लेता नहीं, आजकल सीधी चाह पिए तो वाह बहुत ही खराब करे कालजन ने, जे चाह सागा आप रात वाली रोटी, रात वाली रोटी तो आजकल नख है कि रात वाली रोटी कौन खाए, पहला तो रात वाली रोटी लोग दही में राबड़ी में है छा में अपने चाह सागे भी लोग खाता, तो बे भी तो लोग ही नहीं अपन भी तरीके से पाछो अपनो जीवन जीवनो सी जन ही आप रोगों से बच्चा रे वांगा, और देखो वजन कम करने खातर जिको अच्छो नाश्तो है नी वो दलियो है दूध है और जिका फल दही है जिकी बात आप करी ये सारी चीज़ें हैं, आ चीज़ों को आप ध्यान रख गए और मोटापे से बच सका, और देखो इन अलावा देखो जियाँ रोज़ थोड़ो थोड़ो आपने व्यायाम करते रहना चाहिए, थोड़ो तेज चालनो चाहिए हैं और पूरी नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद बहुत ही ज़्यादा जरूरी हुआ है, जो नींद पूरी ना हुए नींद बहनों तो शरीर रोग लो जाए चिड़चिड़ो पड़ अगर पता नहीं के चीज़ें आ जाए, और जिका जंक फूड आवे आजकल जिका आप कह दें अरे पिज्जो है बर्गर है।

समोसो कचौड़ी ये चीज़ा नहीं खानी चाहिए। और देखो बहनों कह भी है नहीं कि सादो भोजन उच्च विचार है नहीं, तो वही रख है तन्ने खूब तंदुरुस्त, अरे तंदुरुस्त हर बार। तो बहनों बात तो अभी और भी कर सियाँ, आओ सुना आप एक चौखो सो गीत।

बहनों सुनो प्यारो सो गीत। तो अब बात करें आप गर्मी की, तो देखो बहनों गर्मी का मौसम आवे और सागे की है कि आम की खुशबू है बचा मेरे फैल जा। आजकल देखो तो रेड़ियां पर देखो आम ही आम देखे, और के आप ही मन में ही आवे कि वाह भाई स्वाद ही आ गया, अब तो आम की बाहर आ गई। तो आम ने फड़ांगू राजा बहनों यही कौन कही जाए, इन्हें स्वादिष्ट होंगे सागे सागे की है कि सेहत खातर भी वो घणो ही फायदेमंद हुआ है, पण की है कि एक मात्रा सीमित मात्रा ताई खाई जाए नहीं जना, क्योंकि देखो बहनों अति तो हर चीज़ की माड़ी हुआ है। तो आप बात करा आम की, तो आम से आप कई तरह का व्यंजन बना सका भी, कई तरह की चीज़ा वजह की आम से बने। तो देखो आम रस तो आप बनाता ही आए हैं, तो आम रस तो बनाने की थान विधि ठाई है, पर फिर भी हूँ बताई दूँ कह देखो पाकेड़ो आम हुए नहीं बिंगो गुद्दो निकाल गए, और बिंग माँ देखो जिया शक्कर है बर्फ है और दूध है बे मिला गे और मिक्सी माई की है गेड़ो मरवा दो, तो वो अच्छी तरह जना वो जाडो जाडो हो जानी, तो गिलासिया में घाल गे और ऊपर की है कि सूखा मेवा की कतरन में ऊपर छिड़क गे और दे दो। तो जे मान लो कोई अपने रिश्तेदार कोई मेहमान आएड़ा हुआ नहीं तो जे बहाने भी दीवानी तो बेजा ही फूटरो लग गए और पी गए बे के है कबांगी आत्मा पाने आसीस ही देसी। और दूसरी बात है आम की लस्सी, तो आम की लस्सी बनाने गो की है तरीको इं हुआ है कि दही हुए नहीं दही में ही आप आम को गुद्दो मिला गए, बिंग माँ देखो मिश्री कुटड़ी मिश्री गाल गए और इलायची का दाना है बे गाल गए, आप बिना अच्छी तरह मिक्सी में घुमा लेवा और फिर क्या है कि गिलास आप गाल रहा आप पीस का है नी। आ तो नई चीज़ देखी है, तो आ चीज़ पहली भी आप मैं भी पहली बार थानू बतान लाग रही हूँ और आप जरूर बना देख सा। एक अलावा देखो बहनों आम गो पन्नू जी काची केरी हुए नी, आम गो पन्नू तो गर्मी में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हुआ, लू से बचाव है और देखो और पीण में भी बेजा ही स्वादिष्ट हुआ, टाबर भी चटकारा ले ले पिए भी ने है नी। तो आम गो पन्नू बनाने की विधि आप बात कर सा, पर बी से पहली की है आप सुन लिया प्यारो सो गीत।

सी हरी मिर्च जो है थोड़ी सी जी हाँ आधी एक, तो बा पा बिंग मा पा मिलावा। तो अब की है कबो जिको उबलेड़ो केरी गो जिको गुद्दू है नी बिन आपा के मिक्सी में गाल के सुनो फेंट लियांगा। और बिंग सागे की है कि आपा जिको पुदीने का पत्ता है और जिकी भी चीज़ जहाँ आप तैयार करिए वो सो की मिला के बिंग अंदर आपा फेंट गए और एक बर्तन में अलग से निकाल लेवांगा। और फिर बिंग बाद के है बिंग माँ आपा जी हाँ जिकन भी वो पीणो हुए तो भी हिसाब जितो बनाना हुआ नी तो 2 चम्मच वो ले गए गोल और गिलास या मगाल और पानी रला गया आपा देश का। और जी मान लो नमकीन अच्छो लग गए तो की है खांड जी आपा जी की आ मिसरी गाल लिए नी बिना आपा छोड़ सका। देखो बेनो गाल ने खांड भी गाल लियो बोले ना हुआ पर खांड की है कि आपने रोग की जड़ है तो खांड में तो कहूँ आपा जी तो जी को इन पास है रखा नी बीतो ही ठीक है। बिंग जी आपा मिसरी है शक्कर है आ चीजा ना अपनावा नी तो आपा के अपनी सेहत खातर बहुत ही अच्छी रहेगी। इन अलावा देखो बहनों आपा आम की चटनी है बा भी बना सका। आम की मिठी तीखी चटनी की है रोटी और परौंठा सागे घनी अच्छी लाग गए। और आम को अचार अब तो देखो गर्मी में आम का अचार दादी नानी घने गालन लाग जाए नी कई तो की है कि मावा बना गया आपकी बेटी सागे भी गाल है बेटियां खातर भी बना के तैयार रखे है। तो अब देखो छुट्टियां भी तो आन वाली है तो मावा की है ले लेगी केरियां और बेटियां खातर या फिर घर परिवार खातर की है कि तैयार करगी राख सी। तो छुट्टियां में की है कि अच्छी तरह थारू ध्यान रखियो जाओ जना है और खुश रहियो स्वस्थ रहियो ये उम्मीद सागे के है कि बाई किरना ने दो अब आ गया राम राम।

अभी आपने कार्यक्रम सुना घर आंगन। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: 3.2% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade today. The Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas today, launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vithitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS Foreign Ministers Meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rotindra Bosu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई को जिस तरह निशाना बना गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम

0: अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर ने कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15

0: एडमिट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5-15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम

0: करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12, 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म थी गैम्बलर। गीत के बोल नीरज के थे और धुन तैयार की थी एसजी बर्मन ने। द ट्रेन, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है राहुल देव बर्मन ने।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। फिल्म संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज और कल, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं। गीत के बोल साहिर के, धुन तैयार की है रवि ने और आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

एसएच बिहारी का लिखा गीत अभी आपने सुना, जिसकी धुन ओपी नैयर ने तैयार की थी। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की, और इस गीत को हमने फिल्म कश्मीर की कली से लिया था। प्रोग्राम की अगली पेशकश आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मी कांत प्यारेलाल का संगीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, और फिल्म है लोफर।

हम दोनों फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। श्रोता, आपको बता दें, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे प्रसारण केवल FM चैनल और ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर ही सुन पाएंगे। रखरखाव के चलते मीडियम वेव पर हमारे प्रसारण बंद रहेंगे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। थोड़ी ही देर में उर्दू सर्विस हमारे दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी।

जो मौजूदा दौर के हकाइक की अक्कासी करता है और उभरती हुई मार्केट्स नीज तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हर एक मुल्क को न सिर्फ आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए बल्कि एक मजीद जमहूरी सबकी नुमाइंदगी करने वाले और मसावियाना बैन अल-अक़वामी निज़ाम को तश्कील देने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब जयशंकर ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान मगरबी एशिया की सूरत हाल और उसके असरात के सिलसिले में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाहमी मफाद के दो तरफा मामलात पर भी तबादले ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने ब्रिक्स के वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग में जनाब अराक्ची की शिरकत को भी सराहा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि तलबा हुकूमत की तरजीह हैं और वो उनके तई हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने ऐलान किया है कि नीट UG 2026 का दोबारा इम्तहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो तलबा इस इम्तहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट UG इम्तहान अगले साल से मौजूदा OMR पर मबनी तरीक़ेकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा। तालीम के वजीर ने एतराफ किया कि NTA को वाज़े इस्लाहात की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी न हो इसके लिए इम्तहान के निजाम को मुस्तहकम बनाने के इकदाम किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दौरान CIA के डायरेक्टर रेडक्लिफ ने हवाना में क्यूबा के वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे को खुफिया मालूमात फराहम की और सिक्योरिटी और माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा है कि वो क्यूबा के साथ तआवुन के लिए तैयार है बशर्ते कि क्यूबा खातिरख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा में पाबंदियों के बाइस तेल की सप्लाई में कमी आई है जिससे वहां ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। इसे निपटने के लिए अमरीका ने क्यूबा को 10 करोड़ अमरीकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। ईंधन की कमी से क्यूबा के अस्पतालों स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में कामकाज पर असर पड़ा है। क्यूबा ने कहा है कि वो इमदाद के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है लेकिन उसने अमरीका से इक्तिसादी बंदिशें हटाने की बात भी कही है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि CIA के डायरेक्टर ने सदर ट्रंप का पैगाम उनको पहुंचाया है कि वो क्यूबा के माशी और सलामती के उमूर पर तआवुन के लिए तैयार हैं बशर्ते कि क्यूबा पॉलिसी में तब्दीली करे। कीव पर किए गए रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम से कम 21 अफराद हलाक जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरतेहाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मज़कूरा हमले में घरों एक स्कूल जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन और 56 मिसाइलें दागी जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थी। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिसाइलों को नाकारा बना दिया लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरी जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मज़कूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे के तई संजीदा नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ बीजिंग में मुलाकात के दौरान इलाकाई सलामती जैसे उमूर पर तआतुल के बावजूद तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबे में तआवुन पर जोर दिया है। अपनी दूसरी मुद्दत कार के दौरान चीन का सदर ट्रंप का यह पहला दौरा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों फरीकों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि आबनाई हुरमुस को तवानाई की तरसील के लिए पूरी तरह खुला रखा जाना चाहिए। ईंधन के लिए मगरबी एशिया पर इन्हिसार को कम करने के लिए चीन की तरफ से मजीद अमरीकी तेल खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की गई। सदर ट्रंप ने चीनी अशिया पर भारी महसूलात को फिलहाल रोक दिया है जबकि चीन ने नायाब मादनियात की सप्लाई महदूद न करने पर इत्तेफाक किया है। शिमाल मशरकी जमहूरिया कांगो में एबोला वायरस फूट पड़ने से 35 अफराद हलाक और सैकड़ों मुतासिर हुए हैं जिसकी वजह से यह तशवीश पैदा हो गई है कि कहीं ये बीमारी सरहदों के पार भी न फैल जाए। तकरीबन 246 अफराद के बारे में एबोला से मुतासिर होने का शुबा है। बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीका के

0: कजो ने बताया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए आज इलाकाई सेहत हुकाम ने एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद की है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12 21-13 कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमोरा और योइची शिमागोमी को शिकस्त दी। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में तवानाई से मुतालिक तआवुन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इसलाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। सीआईए के डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ ने ईंधन के बहरान के दरमियान हवाना में क्यूबा के हुक्काम से मुलाकात की। और बैडमिंटन में भारतीय मर्दों की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामाईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश जुबीन नौटियाल की आवाज में बजरंगी भाईजान फिल्म का नगमा। नगमा निगार नीलेश मिश्रा, मौसीकार प्रीतम।

0: लेकिन शहनाई जो लिया वो गायकी जो थी शहनाई में आ गई। दुनिया के सामने ये है कि साहब शहनाई है, लेकिन उसके जो तरीके हैं बहने के, राग शुरू करने के, उसके विचार करने के, और उसके साथ साथ ये कि बढ़त में खरचता रिखब खरचता गंधार, कितनी ताने बनेंगे क्या, ये सब उन लोगों का है, करते चले आए। आज हम भी आते हैं मैदान में और अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, दुनिया जानती है कि भी क्या है। वैसे शहनाई तो हर जगह बजती रहती है।
1: सही, वो जो मैंने गायकी वाली बात कही थी ना कि लगता है कि गायकी बज रही है
0: जी,
1: तो ऐसा तो नहीं है कि आपका गाने से भी कुछ खास ताल्लुक रहा?
0: नहीं, हमारे यहाँ तो ये पहली तालीम है कि जो भी हम इसके अंदर करते हैं शहनाई में, वो पहले हम लोगों को सिखाया गया है, अस्थाई अंतरे ये सब तमाम चीजें जबाने रटा के और गवा के, उसके बाद सब वो साज में आ गया और हम लोग करते रहते हैं।
1: जिसका मतलब आपने गाना भी सीखा?
0: थोड़ा सा, कोई ये कि गवैया थोड़ी हूँ
1: जी। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप गाना भी अगर गाते तो कुछ?
0: हाँ, ये जरूर है, अगर गाना गाते थोड़ा गाते जरूर गाते, ऐसा नहीं है। जो चीजें शहनाई में हैं वो पहले गले में आएगी तभी आएगा वो, लेकिन ये कि हमने उसका रियाज नहीं किया और वक्ती हमारे बुजुर्ग हमारे मामू हमारे उस्ताद हमारे मामू थे, उन्होंने हमको बतलाया था, थोड़ा सा उन्होंने बतला दिया भाई ये है, ये इसके बोल हैं, ये अस्थाई में है इस तरीके से, उस वक्त थोड़ा सा गाते थे।
1: वो आपके मामू आपके उस्ताद का नाम क्या था?
0: अली बख्श खां।
1: अच्छा।
0: और उनके एक भाई थे सादिक अली खान नाम था, और उनके बड़े भाई थे वलायत हुसैन खान नाम था, और ये शागिर्द थे मोहम्मद हुसैन खान साहब के, और मोहम्मद हुसैन खान साहब शागिर्द थे ताज खान उस्ताद के। यूं है
1: तो ये जो आपके मामू थे जो उस्ताद जिनका आपने नाम बताया, जिनसे आपने शहनाई सीखी या गाना भी?
0: शहनाई भी गाना भी, यानी राग जो है वो तो ताज खान उस्ताद के यहाँ से आया है, उन तक पहुँचा, उन्होंने हमको भी बतलाया और उसको बाद शहनाई में रियाज कराया उन्होंने।
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: अब ये आपकी फूंक और बाज में जो जो मिठास है ना
0: जी,
1: जिसके सभी शैदा हैं, एक आलम शैदा
0: हाँ,
1: है, ये इसकी वजह कोई टेक्निकल है? टेक्निकल से मेरी मुराद ये है कि इसकी वजह ये है कि आपका बड़ी जबरदस्त आपका ज्ञान है संगीत के राग रागनी में
0: जी,
1: या ये कि इसमें आपका कोई रूहानी जज्बा शामिल होता है जब आप बजा रहे होते हैं?
0: हमारे बुजुर्गों का कौल ये है, रियाज दो किस्म का होता है, एक है ऐसा रियाज कि जो हमने अस्थाई अंतरे संचाई अभोग सब याद किया, दो चार ताने ये कर लिया और साहब मैदान में गए, ये हुआ कि साहब फला राग इन्होंने गाया और बड़ा सही गाया और खूब गाया। और एक रियाज ऐसा होता है कि वो राग राग तो थोड़ा याद किए हुए, यानी जहां कोई 100 याद किए हुए 200 याद किए उसको 10 राग याद है, लेकिन उस 100 राग का जो रियाज था उसने 10 राग में किया है। अच्छा, अब उसमें क्या बात है कि एक एक सुर उसने तौल तौल को रियाज किया है, वो जब तक सही नहीं बोला है वहां से उस हटा नहीं है, वो रियाज करता रहा, नतीजे के तौर पर ये होता था कि वही राग दूसरा गा बजा रहा और वही वो लेके बैठेगा तो जरा उसमें कुछ कैफियत दूसरी पैदा होगी। ये तरीका हमारे यहां था और वही हमारे मामू ने हमको बतलाया कि तुम घबरा के कभी मत शुरू हो कि कोई किसी के बाद, फर्ज कीजिए कि गाना हुआ सितार हुआ सरोद हुआ कोई भी ऐसा अच्छा सास बच चुका है उसके बाद में बैठना है, तो तुम घबरा के शुरू को, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कि पहला काम तुम ये करो कि शुरू करते ही पब्लिक को अपने हाथ में ले लो, और वो क्या है, वो है सुर। एक सुर से दूसरे सुर में मिलना जो है, दो बोल रहे हैं मालूम हो कि एक,
1: वाह
0: ये है असल में, दो सुर हैं यानी खरज खरज है, लेकिन जिसका छेड़ा जाए तो ये पता चले कि एक बोल रहा है। इस तरीके से खरज में हमारे उस्ताद जो थे वो इसी ढंग से बतलाते थे कि ये खरज मिला, अब उसके बाद खरज था पंचम, तो ये मालूम हो रहा सही बोल रही है, खरज था मध्यम सही बोल रही है। जैसे मतलब बहुत से रागों में ऐसा है कि खरज था मध्यम जाना है केदारा मालकोस मध्यम जाना है, तो खरज था मध्यम किस ढंग से जाएंगे उसको ऐसे सही तरीके से मध्यम बोली कि हर एक शख्स ये कहते भाई बहुत उमदा, यानी कोई काम नहीं हुआ अभी, कोई उसमें फिरत नहीं है, कोई उसमें चाल नहीं है, खाली सुर बुलाना है खरज था मध्यम, लेकिन उस ढंग से सच्ची बोली कि सब कहते वाह वाह वाह वाह
1: सही वाह वाह, ये गोया की राज है
0: जी।
1: और अच्छा हज़ब, तो आपने कितनी उम्र से शहनाई?
0: ये तो भाई साहब तकरीबन 6 साल के जब हम थे, हमारी वालदा का इंतकाल हो गया था, हमारे मामा और हमारे नानी और नाना ने पाला, तो वहीं चले आए और वहीं अपना ये हुआ कि साहब थोड़ा सा उर्दू और थोड़ा सा हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया और कुछ खत वगैरह हम लिखने लगे, लेकिन मैं स्कूल से ज़रा भागता था खेलने में, ये हमारी आदत थी। मामू ने

0: देखा कि इसका टाइम बिल्कुल बर्बाद होगा, ये पढ़ने में इसका ध्यान नहीं लगता, बस इतना काफ़ी हो गया कि ये कुछ खुदूत लिख लेता है, पढ़ लेता है, वह इसको ले लो। तो वो हुआ क्या कि उन्होंने जो हमको अस्थाई अंतरे बताए उन्हें नोट कर लिया और कभी भूलते थे उसको देख के याद कर लेते थे। उन्होंने हमको सारा टाइम हमको संगीत में दे दिया और हमको बचपन से इसी का शौक भी था।
1: अच्छा
0: जी।
1: अच्छा, बचपन में जब आपको उन्होंने सिखाया शहनाई
0: जी,
1: तो क्या आपको ऐसा उस वक्त आपका दिल चाहा कि शहनाई के बजाय कोई और साज सीखते?
0: नहीं, क्योंकि चूँ हमारे घर की चीज़ थी ना, एक तरफ एक कमरे में बड़े मामू बजा रहे हैं, एक तरफ मझले मामू बजा रहे हैं, एक तरफ छोटे मामू बजा रहे हैं, एक तरफ हमारे वालिद साहब हैं वो हमारे बड़े भाई से, वो तो हर वक्त तो यही माहौल हमारा बना है, वो शौक ही इसमें आ गया हमारा कि हम इसी को लें। लेकिन उसके साथ साथ ये था कि वो लोग गाते भी थे, बाजे बाजे वक्त मामू बैठे अस्थाई अंतरा याद कर रहे हैं, वो गाना भी सुन रहे हैं, तो हम खेलते खेलते कभी गाना भी गाते थे, बोल क्या ये पता नहीं।
1: अच्छा।
0: खेल रहे हैं लेकिन वो गाना, वो धुन जो है उसकी वो चल रही है, और छोटा सा साज उन्होंने बना दिया था जो साज हम लोग बजाते हैं इससे बहुत ही छोटा पतला साज, वो दिन भर खेल भी रहे हैं उसको भी टें टें इधर उधर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लेकिन 6 साल की उम्र से शुरू करने के बाद 12 साल में प्लेटफार्म पर हम आ गए थे
1: स्टेज पे
0: जी।
1: अच्छा।
0: और इस तरीके से आया कि वो सनद हमको, वो तारीख हमें याद है, हम सन 16 में पैदा हुए और सन 30 में कॉन्फ्रेंस हुई है इलाहाबाद, डीआर भट्टाचार्य साहब, उसमें फैयाज खान वगैरह ये सब लोग गए हुए थे, पुराने लोग, अब्दुल अजीज खान साहब,
1: अच्छा,
0: ये सब लोग गए थे। तो उसमें हमको हमारे मामू ने बैठा रहा था, तो हमने केदारे की गत बजाई थी और वहां पर वो तमगा जो था हमारे मामू को मिलने वाला था कॉन्फ्रेंस का, तो फैसला हुआ ये कि भाई खान साहब आप लोगों ने तो बड़ा नाम किया लेकिन ये आइटम का हकदार ये लड़का है, वो तमगा अब तक हमारे पास है।
1: अच्छा। और जाहिर है कि उस पर आपको बड़ा नाज होगा।
0: बहरहाल वो तो एक सनद है और एक तारीखी चीज है वो,
1: और आपके मामू जो आपके उस्ताद थे उनको भी बेहद खुशी हुई होगी।
0: अरे फिर न पूछिए कि उन्होंने वहां से आने के बाद क्या किया, अब आपको मैं क्या बताऊं। घर में आने के बाद मैं खाला वगैरह थी, माँ तो इंतकाल कर गई थी, खाला वगैरह थी, भाई जरा काम करो कि क्या कि नोन मिर्चा आवार दो उस पर, मतलब
1: नजर
0: नजर न लगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि खुद गए बाजार से बालाई लाए, बालाई लाने के बाद एक उंगली पहले खा लिया तो हमें खिलाया।
1: वाह। अच्छा, फिर उस वक्त से जाहिर है कि आपकी भी बड़ी हौसला अफजाई उस प्रोग्राम से।
0: हाँ, बचपन से शौक था। हाँ, बचपन से लगाव तो संगीत से जरूर था, इसमें कोई कलाम नहीं।
1: तो रियाज फिर आपने कितना शुरू किया? उस
0: रियाज हमने समझ लीजिए कि 6 साल की उम्र से वैसे तो चले, लेकिन जब करीब करीब 10-12 साल के हो गए तो बहुत अच्छा खासा रियाज होने लगा, बड़ा साज मिल गया, और उसके बाद मामू हमारे साथ बैठने लगे। पहले शुरू में तो आधा घंटा 45 मिनट ये टाइम था, लेकिन आखिर में आते आते 3.5-4 घंटे मामू भी बैठे और मैं भी बैठा हूँ
1: लगातार,
0: हर रोज लगातार, किसी दिन नागा नहीं। वही जब मुहर्रम का जमाना आता था
1: सही,
0: तो उसमें हम छोड़ देते थे, हमारे मामू भी छोड़ देते थे, और माह श्याम का जब जमाना आता था इसमें चूंकि रोजा रखते थे तो इतनी मेहनत नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी रोजा खोलने के 2 घंटे के बाद खाना वाना खाने के बाद 15-20 मिनट सांस देखते थे।
1: अच्छा खान साहब, शहनाई वैसे तो शहनाई के साथ जो तस्वीर है वाबस्ता
0: जी,
1: वो खुशी का है, मसरत के लम्हा।
0: हाँ, हाँ,
1: शादी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसमें आपने कभी गम के सुरों को और गम की कैफियत को और उस तासुर को घोलने की कोशिश की, आपको कामयाबी मिली उतनी ही जितनी खुशी के?
0: नहीं, ऐसा है कि स्वर भी 2 किस्म के होते हैं। देखिए, है कि एक स्वर ऐसा होता है कि वो सुर लगा तो इंसान वाह करता है, आह बड़ी अच्छी तारीफ थी भाई, वाह वाह वाह, और एक सुर जो लगा तो उसको वाह करने की ताकत नहीं बल्कि हाय करता है।
1: क्या कहना, सही।
0: अच्छा, वो हाय में क्या होता है कि हाय 1-2 मरतबा करेगा लेकिन उसके बाद फिर वो सकत नहीं रह जाएगी, वो महवे हैरत रहेगा और देखता रहेगा कि क्या बातें पैदा हो रही, और उसको वो सुर जो है खींच के उसके दिमाग को कहां पहुंचा देता है कि जैसे कोई जंगल है और कोई फरियादी अपने परवरदगार से फरियाद कर रहा है, तो फरियाद करने वाला जो है तो गिड़गड़ाएगा ना, और गिड़गड़ाने में जाहिर है कि आंसू निकलेंगे। जब इस किस्म का तसव्वुर उसको होगा तो ऐसे मौके पर वो सुर कैसा बोलेगा खुद फैसला करे।
1: बहुत सही है, बहुत अच्छा आपने उसका उसकी तशरीह की। आपको ज्यादा क्या, आपका दिल चाहता है कि आपके सुनने वाले वाह कहें या हाय?
0: नहीं, देखिए आजकल जरा सा कुछ ऐसा हो गया है कि दूसरे मुल्कों की हवा लगती चली जा रही, और उसमें नतीजा ये होता है कि तालियां जो बज गईं वो समझ लीजिए बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम हुआ। हालांकि हम लोगों के बचपन में तालियां बजती थी कॉन्फ्रेंसों में, लेकिन

0: जगह जहां सही मानों में सच्चा सुर लगा और सच्ची लय पर आए, भाई वाह वाह वाह वाह वाह। और आजकल तो यह है कि अगर सुर से जरा अलग हो जाओ और जरा ताल से जरा सा खफीफ, तो उसमें लड़ाई अगर हो गई तो सोचते कि यही है संगीत, ये मजेदार है। हालांकि ये नहीं है। संगीत का मतलब ये है कि जिस वक्त वो तालियां बजाना चाहे, शोर करना चाहे, तो इतना सुर गालिब हो जाए उन पर कि वो इसकी ताकत न रह सके कि तालियां बजाएं और शोर मचाएं। और नतीजा ये हो कि जिस वक्त खत्म हो जाए प्रोग्राम, तो चाहे वो एक घंटे का हो चाहे दो घंटे का हो, उनको ये मालूम हो कि अभी 10 मिनट प्रोग्राम हुआ, और वो ये इसलिए ताली बजाएं कि फिर से प्रोग्राम हो, हालांकि वो कलाकार थक चुका है, अब उसमें इतनी सकत नहीं है कि जो चल सके।
1: बिल्कुल सही। अभी खान साहब आपने कहा कि हमारे यहाँ बाहरी संगीत का और बाहरी माहौल का कुछ ज्यादा असर होता जा रहा है।
0: हाँ,
1: तो बाहर भी आप भी तो गए हैं बहुत बाहर।
0: मैं बहुत गया हूँ, मैं अमेरिका वगैरह और फ्रांस, लंदन, जर्मनी सब घूम चुका हूँ।
1: हाँ, अच्छा, वहाँ जब आप गए तो खैर जबान का तो कोई मसला था नहीं इसमें?
0: जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल।
1: संगीत की तो एक जबान होती है,
0: बिल्कुल,
1: कि जो हम कहते हैं साहब वो गायकी थी उसमें जबान नहीं, वो समझ पा रहे थे, गजल थी या
0: बिल्कुल।
1: तो उन लोगों ने किस तौर से आपके इस फन को पसंद किया?
0: आप देखिए, ये आज की बात नहीं, मैं सुनता था किसी जमाने में बुजुर्गों से, हमारा वो संगीत है कि दुनिया के हर कोने के लोग पसंद करते हैं, पर क्या मालूम, हम तो कभी गए भी नहीं, सुनते थे, लेकिन जाने से ये पता चला कि हकीकतन ये है कि जो हमारा संगीत है शास्त्रीय संगीत, इसको जो दुनिया वाले पसंद करते हैं, और शास्त्रीय राग न के लाइट म्यूजिक छोटी पसंद करते हैं, वो भी दुनिया, वो तो हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो इस मेल के लोग हैं वो रागों को पसंद करते हैं। तो यकीन मान लीजिए, ये पता चला कि हमारा संगीत सारे हर तरफ छाया हुआ, और सब चाहते हैं कि हम संगीत को सुने। हमारा अपना खुद बर्लिन में जब प्रोग्राम किया तो ऐसा हुआ कि एक दो आदमी वहाँ के बाल बाल रखे, बड़ा भारी स्टेज था, एक उस कोने पर दूसरा उस कोने पर, और धूप बत्ती जलाए, और ऐसा मालूम है जैसे कुछ किसी देवल में बैठा है।
1: अच्छा
0: अच्छा, आप यकीन मान लीजिए कि उस वक्त जब मैं पहुंचा हूं स्टेज पर, उन सबों को देख के हमारा मूड बन गया।
1: सही,
0: यानी ऐसे मालूम होता है कि
1: इश्तियाक से,
0: नहीं मालूम होता जैसे कोई पूजा करने के लिए देवल में कोई बैठा, ऐसा होता है ना। जैसे फर्ज कीजिए, हम ही लोग, हमने बालाजी के मंदिर में बहुत प्रयास किया है। अच्छा। बालाजी के मंदिर में बहुत प्रयास किया, और उसके बाद फातमान अलैहिस्सलाम है हमारे यहाँ, हम मुहर्रम में 10 रोज फाटक पर बैठ के बजाते हैं, ऐसे नंगे सर नंगे पैर, ये हमारे खानदान का ये।
1: अच्छा।
0: तो वहां क्या होता है, वो यही ना है, रूहानी चीज है ये, वो चाहे अल्फाज से आप अदा करें चाहे किसी साज से अदा करें।
1: सही।
0: ये तो रूहानी ताल्लुक है। नतीजा ये हुआ साहब कि उन दोनों को देख के मूड बन गया, और ऐसा तो केदारा बजा है कि वो जो कहते हैं राग रसोई पागरी जो कभी कभी बन जाए, तो उस दिन केदारा बन गया था। वैसे केदारा 1000 बार हमने बजाया है, लेकिन उस दिन केदारा बजा तो जो हमें आज तक याद है, शायद हमेशा याद रहेगा।
1: सही सही। और वो लोग भी बेहद लुत्फानंदोज हुए,
0: ऐसा लुत्फानंदोज हुए कि वो तो ये चाहते हैं कि ये लोग यहाँ आके रहें, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भी कि वहां जाते हैं, अपना प्रोग्राम करते हैं और रहते भी हैं। हमारी अपनी आदत यह है कि मैं उस वक्त तक जरूर रहता हूं जो मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं, है, लेकिन उसमें भी अगर कहीं इजाफा हो गया, 2 महीने से ऊपर चला, 2.5 महीने, तो मैं घबरा जाता हूं, और मैं यही कोशिश करता हूं कि अपने घर चला जाऊं। हिंदुस्तान में रह के जो आदमी बंबई है, कलकत्ता है, मद्रास है, बड़े बड़े शहरों में घूमता है, और प्रोग्राम खत्म करने के बाद उसको बनारस दिखाई दिए, तो वो अमेरिका में कब रहेगा?
1: बहुत अच्छे।
0: हमारे एक साहब आए वहां,
1: बनारस तो वतन है आपका।
0: नहीं, वो बड़ा लुत्फ है, अमेरिका में एक आदमी बड़ा पैसे वाला, बहुत धनवान, उसने जो देखा कि ये ऐसा आर्टिस्ट है और तमाम दुनिया जो है गर्विदा बनी है, तो उसने कहा क्या खर्च होगा, कोई हर्ज नहीं। उसने कहा खान साहब आप यहाँ रहिए। हमने कहा साहब मैं कैसे रहूँ, मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ इतने ग्रुप के लोग हैं, 8-8 आदमी, इन सबको ले लीजिए। हम कहा खाली ये 8 नहीं है भाई, इनके घर वाले हैं सब, बाल बच्चे हमारे, इन कितने, उनका हजारों के, सबको ले आइए, मैं मकान दूंगा, मैं मोटर दूंगा, मैं खर्चा दूंगा, मैं नौकर चाकर सब दूंगा।
1: वाह,
0: हर तरफ से बांध दिया साहब, और क्या आप लेंगे, हम सब देंगे, और डॉलर। मैंने कहा भाई ये तो अच्छी तमाशे की बात हो गई, अब हमको निकलने की कोई जगह नहीं। तो हमारे साथ में थे सैयद हाशिम हुसैन साहब, उनका कहा कि भाई खान साहब अब, हम कहा भाई अभी जगह है, हम लोग सुर लगाने वाले हैं, मेरखंड की तान जानता हूँ। नतीजे के तौर पर हम कहा साहब बिल्कुल रहूंगा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल रहूंगा, लेकिन एक शर्त पर। किन क्या? हम कहा मैं हिंदुस्तान का हूँ। कहीं यस। हम कहा कि देखिए मैं हिंदुस्तान में रहने के बावजूद तमाम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ घूमते हैं।

0: लेकिन उसके बाद प्रोग्राम के बाद बनारस जाते हैं, आप अमेरिका में बनारस बना दीजिए मैं रह जाऊं। तो कहते हैं नो नो नो
1: सुर लगाया आपने।
0: अभी सवाल यह है कि जो हमारा माहौल अगर वो हमें न मिले तो क्या पैसा पैदा करने के लिए जाए? बखुदा ये ईमान हमारा नहीं है, मैं खूब जानता हूं ये पैसा, बताइए तो कैसे कैसे रिकॉर्ड, कैसी कैसी तारीखें आपके सामने, कितने पैसे वाले थे, कैसी कैसी दौलतें, कैसी कैसी इमारतें, कहाँ हैं इस वक्त?
1: सही सही जिंदा रहते
0: तो आप इस वक्त अगर बफर्स माल हमारे पास हो जाए तो क्या हम ये हम उम्मीद करेंगे कि हमेशा हमारे पास रहेगी? अरे नहीं, हमारे ही बाल बच्चे वो खाएंगे पियेंगे नहीं मालूम किस गलत तरीके से इस्तेमाल कर जाए।
1: सही,
0: तो ये है हमको इतना चाहिए कमी ना हो, जो जरूरत हो पूरी हो
1: जरूरत,
0: बस बस बस इतनी बात है। और यही वजह है, एक बात और आपको बता दूं, जरा गौर तलब है, जितने भी बिजनेसमैन, जितने भी दूसरे काम करने वाले, ये जितने लोग हैं कल क्या थे और आज क्या हो गए और साल भर के बाद साहब वो किला भी बन गया और बिजनेस वो कारखाने भी खुल गए, ये एक नहीं आपको हजारों मिसाल मिलेगी। लेकिन मैं आपको 1000 बरस का जमाना देता हूं, अब से 1000 बरस का, इस वक्त तो बहरहाल कुछ ऐसा होगा कि लखपति आपको मिलेंगे, लेकिन इसके पहले ज्यादा नहीं 30 साल पेशतर अगर आप गौर करेंगे तो जो ऊंचे चोटी का कलाकार शास्त्रीय संगीत वाला लखपति तो आपको नहीं मिलेगा।
1: सही।
0: अच्छा, तो क्या सबके दिमाग खराब थे? यानी वो लोग नहीं हो सके जिन्हें संगीत का वजन इतना पड़ता है कि वो भाग दौड़ कोई दूसरा काम कर ही नहीं सकता, उसके साथ तो एक दूसरा आदमी हो जो तमाम दुनिया का कारोबार देखे, कागजात और ये वो दौड़ धूप, वो खुद बजाते खुद नहीं कर पाएगा। और यही वजह है कि जो मैं खूब गौर करता हूं कि जितने अच्छे अच्छे कलाकार थे भाई वो पैसे वाले क्यों नहीं हुए? नाम तो बड़ा किया पर पैसे वाले क्यों नहीं हुए? वो असल है सुर, जो इस काम का करने वाला होगा वो किसी डॉक्टर से, किसी अच्छे हकीम से, जो बड़े लोग उनसे पूछे कि इसका दिल दिमाग कैसा होता है, वो कभी भाग दौड़ नहीं करेगा। बोलो अभी फर्ज कीजिए प्रोग्राम करके आया, उसको 10,000 रुपए मिले, ठीक है साहब, एक फौरन आए कि चलिए वो थका हुआ है, तो यकीन मानिए कलाकार होगा तो नहीं जाएगा, यानी यार अभी है हमारे पास भाई इस वक्त प्रोग्राम, हालांकि पैसा मिल रहा है लेकिन नहीं जाएगा। तो ये सूरत होती है, हम लोग इसी में बस हैं, अल्लाह का करम है,
1: यही दुनिया है आपकी, यही दौलत है
0: ये,
1: और फना है बिल्कुल उसी में अपना डूबे हुए।
0: एक बात और बता दूं भाई साहब, ये सब गौर तलब बात है, किसको बताऊं? अब हम लोग ये समझ लीजिए बुढ़े हुए, यानी तमाम दुनिया कारोबार देख लीजिए, तमाम दुनिया के मजाहिब देख लीजिए, है ना, कोई कौन है साहब, वो हिंदू है, मुसलमान, वो सिख है, वो ईसाई, वो अंग्रेज है, तमाम दुनिया, और सबकी किताबें धार्मिक, बिल्कुल सही, मैं सबको मानता हूं, ठीक है, कोई ऐसा मजहब बताओ जिसमें सब एक हो, कोई बताए, हम तो चैलेंज करते हैं, दुनिया का कोई इंसान बताए एक मजहब ऐसा बताओ जिसमें सब इकट्ठा हो, और वो है हमारा मजहब संगीत।
1: संगीत सही,
0: हम कहते हैं 7 सुर हैं, खरज, ऋखभ, गंधार, मध्यम, पंचम, थेवत, निखाद, इसका नाम चाहे आप जो रख लें, अंग्रेज कुछ कहते हैं, वहां वाले कुछ कहते हैं, लेकिन वो 7 सुर जो है, वजन जिसको कहते हैं सुर का, वो वही है, दूसरा नहीं, ऐसा कोई तो निकाल के लिया है।
1: और हर संगीतकार का ईमान इन्हीं 7 सुर,
0: 5 सुर कोमल है, तो कोई तो कहे 6 है या कोई कहे 4 है,
1: कोई इख्तलाफी नहीं,
0: कुछ नहीं, हम तो ऐसा मजहब चाहते हैं जहां सब इकट्ठा हो जाए एक बात मानने में। यकीन मान लीजिए, अभी फर्ज कीजिए साहब क्या है साहब, उस छू जाएगी, वो पानी है तो छू गया, अरे यार ये क्या है, एक आदमी मालकोस गा रहा है, समझ लीजिए उससे आप छुआ छूत करते हैं, तो अब मालकोस मत गाना इसलिए कि मालकोस को छू लिया उसने समझ गया आप, अब मालकोस को छू लिया तो अब मालकोस मत गाना, यार ये क्या तमाशा, ऐसी दुनिया होनी चाहिए। संगीत ऐसी चीज है कि जिसमें रियाज करेगा इंसान, जिसका डूबेगा हर बुराई से पाक हो जाएगा, उसको बुरा कोई काम ही नजर नहीं आएगा, अगर कभी मार पड़ेगा तो भागेगा, यार ये क्या कर रहे हो, वल्लाह क्या तमाशा है, अरे भाई भागो, ये काम हमारा है, अरे ये काम दूसरों का, यार हम लोगों का काम नहीं, हम लोग तो बैठो महफिल लगाओ या गाना बजाना हो, ये इस किस्म का दिमाग होता है, किसी बुराई में नहीं आएंगे वो, जैसे तो के पाकिट मारो ये करो, वो करेंगे नहीं कभी, बस उनका दिमाग ही कुछ फकीरी लाइन होती है। और यही मैंने कहा इसके कबल आपसे कि कोई ऐसा कलाकार दिखाइए जो 1,00,000 रुपए का पैदा हुआ हो उस जमाने का, हमें तो नहीं नजर आया, शायद कोई रहे हो भाई, हम नहीं कह सकते, हमारी जहां तक पहुंच है समझ है, हमने तो किसी बड़े कलाकार को लखपति तो नहीं देखा। अब इस वक्त के जमाने में हो सकता है, क्योंकि अब तो कोई वही वैल्यू नहीं है, 1,00,000 है क्या चीज
1: जाहिर है। अच्छा खान साहब, आप आज जिस मकाम पे हैं
0: जी
1: फन के एतबार से, क्या आप

0: समझते हैं कि आपको सब कुछ हासिल हो गया जो आपकी तमन्ना थी या आपका ख्याल था।
1: जनाबे वाला, अब तो आंखें खुली हैं और अब समझ में आया कि संगीत क्या है सही मालूम है।
0: अब इस मरहले पे
1: हाँ, और दिल चाहता है कि परवरदिगार आलम फिर से इतनी ताकत दीजिए, जो हम 30 बरस में थे तो शायद 10 बरस हम कोई काम नहीं करेंगे और शहनाई को हम कहाँ पहुंचा देंगे। पता चल जाएगा कि शहनाई में क्या चीज नहीं है। अब भी देखिए, इसके अंदर तार का साज आपको मालूम होगा, इसके अंदर गमक मालूम होगी, इसके अंदर वायलिन जैसा मालूम होगा, इसके अंदर ऐसा मालूम होगा जैसे एक छोटी लड़की बच्ची नाच रही है, और ऐसा मालूम हो रहा है कि भाई वाह वाह वाह क्या मालूम हो रहा है, डांस हो रहा है।
0: आपके बाजू में तो बिलाशुबा ये सारी चीजें,
1: जब तमाम चीजें हैं और मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें और क्या बाकी है, तो अब चूंकि अब जमाना जरा दूसरे किस्म का है, अब इसमें ताकत की जरूरत है ना।
0: सही।
1: और फिक्रें हैं, जाहिर है कि बाल बच्चे हैं, उनको देख ये कर ये कर ये कर, तमाम दुनिया की बातें, तो ये सब अगर एक तरफ हो जाए और अभी भी टाइम मिले तो यकीन मान लीजिए अभी आप दूसरे ढंग की शहनाई सुनेंगे। बशर्ते कि हमको टाइम मिले 5-7 साल, कोई हमसे नहीं बोले और हमें कोई फिक्र ना हो कि हमें खाना पीना बच्चों का करना है, ये क्या करना, कुछ नहीं, तो 5 साल के बाद आपको कुछ और ही शहनाई नजर आएगी।
0: हम उम्मीद,
1: हमारे मामू का कौल ये था कि पहले के बुजुर्ग जो गुजर गए हैं उन्होंने पानी बरसाया और दिया जलाया, लोग कहे कि गलत है, हो गलत, मामू कहते थे सही है, हमारे मामू कहते थे सही है। अब ऐसी सूरत में हमारे मामू कहते थे कि हम वो तो नहीं है लेकिन इतना दावा रखता हूं कि जब चाहूंगा रुला दूंगा, जब चाहूंगा हंसा दूंगा, और ये करते थे वो, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3-4 राग उनके ऐसे थे। 18 घंटा रियाज था उनका उस जमाने में, और 18 साल तक बालाजी मंदिर में रियाज किया उन्होंने। ये सब चीजें ऐसी नहीं आती भाई साहब, ये है गाना बजाना, मना करता है गा ना,
0: ना
1: बजा ना, और जब इसके पीछे पड़ो तो कहता है कर्तव्य, यह है कर्तव्य, करेगा तब होगा। तो हमारे मामू ने सब किया है और उनसे हमको जो कुछ भी सुखा मिला है हम उससे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
0: वाह वाह साहब, और अभी जो आपने आखिर में जो कुछ कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नए संगीतकार जो हैं सीखने वाले, उनको काफ़ी इससे रोशनी मिली होगी और हमारे सुनने वालों को बहुत लुत्फ आया होगा। खान साहब, एक बार फिर हम अपने सुनने वालों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: आदाब से, आदाब से।
2: सामिन भी, आप भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान से की गई गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। आपसे महवे गुफ्तगू थे मुजीब सिद्दीकी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत हैं फिल्मी नगमे। प्रोग्राम के आगाज में समाप्त फरमाइए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है मेरी जंग।

और सामिन लीजिए, अब सुनिए आशा भोसले और अभिजीत की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया है जतिन ललित ने।

और सामिन प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर का लिखा है गीत, मौसिकार है नदीम शर्मन, फिल्म है हम है राही प्यार के।

0: मोहम्मद रफी और साथी को सामने भी आप सुन रहे थे फिल्म थी एक बार मुस्कुरा दो, मौसीकार थे ओपी नैयर। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू ज़बी में तवानाई से मुतालिक ताउन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमायाकारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मुफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने इस्लाहशुदा और मुअस्सर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुजाकरात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले में 21 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए। और बैडमिंटन में भारतीय मर्दों की सितवक साई राजरंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स की जोड़ी थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुत्तहिदा अरब अमीरात यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बातचीत में तवानाई से मुतालिक ताउन और दो तरफा तिजारत खास मौजूआत रहे। ये बातचीत मगरबी एशिया में जारी तनाज़ा की वजह से आलमी सप्लाई में रुकावटों के पस मंज़र में की जा रही है, जिसमें उम्मीद है कि दोनों फरीक तेल के ज़खीरों और गैस सप्लाई इंतजाम के बारे में तबादले ख्याल करेंगे। दौरे से पहले यूएई के बैन-उल-अक़वामी ताउन की वजीर ममलकत रीम बिनत इब्राहिम अल हाशमी ने वजीर आजम मोदी को यूएई में एक मुमताज शख्सियत करार दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये दौरा महज इसी साल के दौरान आला सतह के बहुत से दौरों के बाद किया जा रहा है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने भारत का दौरा जनवरी में और वली अहद शहजादा ने फरवरी में किया था। वज़ीर ख़ारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में सभी शराकत दारों के साथ काम करने का पाबंद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की 2026 की मीटिंग के दूसरे एक दिन ओपन सेशन से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि इन सरगर्मियों की वसात से इस बात की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि सभी रहनुमा तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में कसीर मुल्की ताउन को मुस्तहकम बनाने में शामिल हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि बैन-उल-अक़वामी माली तरीक़ेकार में इस्लाह की फौरी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत ने इस्लाह शुदा कसीर मुल्की निज़ाम में लगातार वकालत की है, जो एक ऐसा मुल्क है जो मौजूदा दौर के हकायक की अक्कासी करता है और उभरती हुई मार्केट्स नीज तरक्की पजीर मुल्कों की उमंगों पर काम करता है। उन्होंने कहा कि हर एक मुल्क को न सिर्फ आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए बल्कि एक मजीद जमहूरी सबकी नुमाइंदगी करने वाले और मसावियाना बैन-उल-अक़वामी निज़ाम को तश्कील देने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा है कि तलबा हुकूमत की तरजीह हैं और वो इनके तई हसास हैं। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब प्रधान ने कहा कि इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने ऐलान किया है कि 2026 यूजी नीट का दोबारा इम्तिहान अगले महीने की 21 तारीख को कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि तलबा जो इस इम्तिहान में दोबारा शामिल हो रहे हैं उन्हें अगले महीने की 14 तारीख तक इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा।

वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि नीट यूजी इम्तिहान अगले साल से मौजूदा ओएमआर पर मबनी तरीक़ाकार के बजाय कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तरीके से कराया जाएगा। तालीम के वजीर ने एतराफ़ किया कि एनटीए को वाज़ह इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में कोई बदउनवानी ना हो, इसके लिए इम्तिहान के निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के इकदाम किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के उनके हम मनसब शी जिनपिंग के दरमियान अहम बातचीत हुई, जिसमें अमरीका और चीन के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। अगरचे दुनिया की इन दो बड़ी ताकतों के दरमियान ईरान, ताइवान और कई मामलों पर अख्तलाफात बरकरार हैं, सदर ट्रंप ने नामा निगारों को बताया कि वो और चीन के सदर ईरान में तनाज़ा को ख़त्म करना चाहते हैं और इसके हक में हैं कि ईरान न्यूक्लियाई हथियार का हामिल ना हो। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बहुत अच्छी तजारती डील्स हुई, अगरचे उन्होंने इस सिलसिले में तफसीलात नहीं बताई। चीन की हुकूमत का कहना है कि उसके और अमरीका के दरमियान कई नए मफाहमत नामे हुए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कीव पर किए गए रूस के मिजाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत कम अज कम 21 अफराद हलाक, जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की हंगामी सूरत हाल से मुतालिक खिदमात के मुताबिक मस्कूरा हमले में घरों, एक स्कूल, जानवरों के इलाज से मुतालिक एक क्लिनिक और दीगर शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की फजाइया ने बताया कि रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिजाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर कीव को निशाना बनाकर दागी गई थीं। यूक्रेन के दिफाई निजाम ने मुबैना तौर पर ज्यादातर मिजाइलों को नाकारा बना दिया, लेकिन कुछ मिजाइलें रिहायशी इलाकों पर जा गिरीं, जिसकी वजह से एक 9 मंजिला रिहायशी इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर वलेदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि मजकूरा हमले से पता चलता है कि रूस जंग के खात्मे को लेकर संजीदा नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने इत्तेहादियों से अपील की कि वो इन हमलों का जोरदार तरीके से जवाब दें। शुमाल मशरकी जमहूरिया कांगो में एबोला वायरस फूट पड़ने से 35 अफराद हलाक और सैकड़ों मुतासर हुए हैं, जिसकी वजह से ये तश्वीश पैदा हो गई है कि कहीं ये बीमारी सरहदों के पार भी न फैल जाए। तकरीबन 246 अफराद के बारे में एबोला से मुतासर होने का शुबा है। बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीका के मरकजों ने बताया कि इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए आज इलाकाई सेहत हुकाम ने एक हंगामी मीटिंग मुनाकिद की है। रेंथम बासो को मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली का बिला मुखालिफत स्पीकर चुन लिया गया है। जनाब बासु, जो भारतीय जनता पार्टी के कानून साज रुकन के तौर पर कोच बिहार जनूब की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने असम्बली इंतखाबात में अपनी पहली कामयाबी के बाद ये ओहदा पहली बार संभाला। उनका इंतखाब प्रोटेम स्पीकर तपिस रॉय की निगरानी में आज सुबह किया गया। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने जनाब बासु का नाम बाकायदा तौर पर तजवीज़ किया था। ऐवान ने इस तकर्रुर की सौती वोट से तस्दीक कर दी। तृणमूल कांग्रेस के अरकान इंतखाबी अमल के दौरान मौजूद नहीं थे, अलबत्त उन्होंने इजलास में बाद में शिरकत की। क्यूबा में जारी तवानाई के बहरान के दौरान CIA के डायरेक्टर रैटलिफ ने हवाना में क्यूबा की वजारत दाखिला के हुक्काम के साथ मुलाकात की। मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने एक दूसरे को खुफिया मालूमात फराहम की और सिक्योरिटी व माशी इस्तेहकाम जैसे उमूर पर तबादले ख्याल किया। अमरीका ने कहा कि वो क्यूबा के साथ ताउन के लिए तैयार है, बशर्ते कि क्यूबा खातिरख्वाह इस्लाहात के लिए आमादा हो। क्यूबा में पाबंदियों के बायस तेल की सप्लाई में कमी आई है, जिससे वहां ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारत की मर्दों की सरकर्दा जोड़ी सित्वक साई राजरंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। उन्होंने 21-12, 21-13 से कामयाबी हासिल की। इस जोड़ी ने जापान की ताकोमी नोमोरा और योइची शिमा गोमी को शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में दुनिया की 12 नंबर और ओलंपिक्स में 2 बार तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु ने जापान की एकाने यामागोची को क्वार्टर फाइनल में 21-19, 18-19 और 15-21 से शिकस्त दी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू ज़बी में तवानाई से मुतालिक ताउन और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने दिफा, पेट्रोलियम और सरमाया

0: कारी के मैदानों में एक दूसरे के साथ मफाहमतनामे किए। नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारजा की 2026 की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। वज़ीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने इस्लाह शुदा और मौसर कसीर मुल्की निज़ाम के मकसद को आगे बढ़ाने में भारत के अज़्म को दोहराया है। एनटीए नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान 21 जून को कराएगी। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के अमल में इंसाफ और शफाफियत की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग के दरमियान अहम मुजाकरात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात की अहम पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की खड़ी में इस वक्त संध्या के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

युवानी सुनने वाले सभी युवा श्रोताओं को बलविंद्र कल्याणा की प्यार भरी सलाम, राम राम और नमस्कार। दोस्तों, दिल आवाजें देता है शाम होने की तन्हाई में, वक्त रुक जाता है मोहब्बत की रुसवाई में, बहुत झेले हैं दुख हमने दिल के जवां होने के, कभी खुशियां आंख मिचोली खेलती हैं, कभी गम गले लगाते हैं, बस रह जाते हैं कुछ गीत हर शाम को फिर बुलाने के लिए, गले लगाने के लिए और फिर कुछ गुनगुनाने के लिए, ले जाती है भंवरों की टोलियां यहीं कहीं सुर सरगम की गलियों में, बस ये इश्क है इसे रहने दो दिल में, ताकि दिल कभी खाली ना रहे और जहां कभी निकले ना।

दुनिया की दुनियादारी में, वहां ना कुछ पाने को होता है और ना खो जाने को, बस चलता रहता है इश्क।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मौसम बदलते हैं कुछ नया कर गुजर जाने के लिए। खून के आंसू भी बदल देते हैं जिंदगी की राहें। फिर चाहे वो पत्थर की पूजा हो या फिर पत्थरों के रास्ते, सब अच्छा लगने लगता है जब फकीर बनकर एक देह साधती है खामोशियों में सरगम और संगीत की एक धुन, जिसे सुनने को बेताब रहती है कानों की खामोशियां, बेताब रहती हैं धड़कने जो कभी रुकती नहीं, अपने यार के बिछड़ जाने से बस इंतजार करती हैं, जब तक हवाएं साथ देती हैं सांस लेने के लिए, और गीत बनकर यादें हमारे साथ चलती रहती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कॉटन सिटी चैनल से कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवा वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है। युवा वर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है। हर व्यक्ति जीवन के इस दौर से गुजरता है। युवाओं को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहिए। किसी भी राष्ट्र में कुल जनसंख्या का 25, 30 या 40% हिस्सा युवाओं का होता है। किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा वर्ग का सर्वाधिक योगदान रहता है। राष्ट्र की प्रगति विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में विकास पर निर्भर होता है और युवा इसमें सहयोग करते हैं। इन सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर युवाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। इन सभी क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए युवाओं को एक सकारात्मक दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। युवाओं के विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं को उचित शिक्षा और कौशल विकास की आवश्यकता होती है ताकि वे सही दिशा में समृद्ध हो सकें। युवा में काम करने की क्षमता होती है और वह उत्साह से भरा होता है और सफलता की ओर अग्रसर होने का उसमें हुनर होता है।

दोस्तों, बात चल रही है युवा और राष्ट्र निर्माण की। तो नेल्सन मंडेला की एक खूबसूरत जो उन्होंने पंक्तियां कही थी, आज के युवा कल के नेता हैं, जो हर एक पहलू में सही लागू होता है, युवा राष्ट्र के किसी भी विकास की नींव रखता है। युवा एक व्यक्ति के जीवन में वह मंच है जो सीखने की कई क्षमताओं और प्रदर्शन के साथ भरा हुआ है। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की जो भूमिका है वो इस प्रकार से रहती है, वो जो काम कर सकते हैं उनमें एक युवा मन प्रतिभा और रचनात्मकता से भरा हुआ होता है। यदि वे किसी मुद्दे पर अपनी आवाज उठाते हैं तो परिवर्तन लाने में सफल होते हैं। युवाओं को राष्ट्र की आवाज माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। जिस तरह के आकार में भी हैं, उनके उसी तरीके से उभरने की संभावनाएं होती हैं। राष्ट्र द्वारा विभिन्न अवसरों और सशक्त युवा प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए, जो युवाओं को विभिन्न धाराओं और क्षेत्रों में कैरियर बनाने में सक्षम बनाएगा। युवा लक्ष्यहीन, भ्रमित और दिशाहीन नहीं होने चाहिए, उनके मार्गदर्शक अच्छे होने चाहिए, ताकि वे सफल होने के लिए अपना सही मार्ग प्रशस्त कर सकें। युवा हमेशा अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना करते हैं और हर बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक पूर्ण अंत है, लेकिन वो फिर से कुछ नए लक्ष्य के साथ खोज करने के लिए एक नई दृष्टिकोण को साथ लेकर चलते हैं।

श्रुतौ नेत्रदान महादान, हम हमेशा ये सुनते आते हैं कि नेत्रदान करना चाहिए। हमारे सभी धर्मों में दया परोपकार जैसी मानवीय भावनाएं सिखाई जाती हैं। यदि हम अपने नेत्रदान करके मरणोपरांत किसी की निष्काम सहायता कर सकें तो हम अपने धर्म का पालन करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, इसलिए यह महादान माना जाता है। आंखें कभी मरती नहीं हैं और अगर आप दूसरों को दान करते हैं तो ये अमर हो जाती हैं, इसलिए नेत्रदान जरूर करें। अक्सर आप कुछ स्लोगन सुनते रहते हैं, नेत्रदान महादान बनाएं अपनी अलग पहचान, और मरता है शरीर अमर है आत्मा, नेत्रदान से मिलता है स्वयं परमात्मा। जी हाँ दोस्तों, स्वयं परमात्मा ही मिलता है, क्योंकि आपकी आंखें आपके जाने के बाद हमेशा के लिए जिंदा रहती हैं और इस दुनिया को देखती हैं, और परमात्मा स्वरूप ये दुनिया आपकी आंखों के सामने होती है। आंखों से कीमती कोई रतन नहीं है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। ये बात भी सच है कि आंखें बहुत कीमती रतन होता है जीवन का। आंखों के दान से जरूरतमंद का घर रोशन होता है, आंखें कभी नहीं मरती, इन्हें दान करें। जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को नेत्रदान। जी हाँ दोस्तों, नेत्रदान जरूर करें।

दोस्तों, बात अगर ग्रामीण विकास की करें तो इसका अर्थ है गांवों का विकास या प्रगति। सामान्य तौर पर ग्रामीण विकास को सामुदायिक विकास का पर्याय माना जाता है। सामुदायिक विकास के अर्थ की व्याख्या करते हुए यह कहा गया है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नए साधनों की खोज में बदला जा सकता है। युवा वर्ग ग्रामीण समाज के कई समुदायों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकता है।

कुशलतापूर्वक उन्हें आगे बढ़ा सकता है, जिसके कारण ग्रामीण विकास और ग्राम में जो आपसी सौहार्द है वो बना रह सकता है। श्रुतो, भारत गांवों में रहता है, अपनी आबादी का 3/4 से अधिक गांवों में रहता हुआ भारत एक दूसरे से मिलकर और भिन्न भिन्न रीति रिवाजों के साथ चलते हुए देश के लिए महत्वपूर्ण है। गांवों के जीवन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं। आबादी के इतने बड़े हिस्से की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से युवा वर्ग जन कल्याणकारी नीतियों के साथ मेहनत कर सकता है। भारत में स्वतंत्रता के तुरंत बाद इस तरह की कई योजनाएं बनी जिनकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी, जिनके माध्यम से निरक्षरता, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि की पिछड़ता और ग्रामीण समुदाय में प्रतीत रूढ़िवादिता की समस्याओं को हल किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण विकास के लिए कृषि की स्थितियों और दिशाओं में सुधार करना आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदला जाना भी बहुत ज़रूरी है। आवास की स्थिति में सुधार किया जाना जरूरी है। किसानों को कृषि भूमि प्रदान की जानी भी जरूरी है और उसकी जानकारी देना भी जरूरी है। कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में भी सुधार किया जाना अति आवश्यक है और कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी भी आवश्यक है। इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है।

दोस्तों, कार्यक्रम में अगर आज के दिन की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 15 मई 1995 में एलिसन गारग्रीव्स बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। 15 मई के दिन 1999 में कुवैत सरकार द्वारा महिलाओं को संसदीय चुनावों में मताधिकार का हक प्रदान किया। और आज ही के दिन 2001 में इटली में दक्षिणपंथी गठबंधन को बहुमत मिला। और श्रोतो, आज ही के दिन 2002 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर प्रतिबंधों का अनुमोदन किया। और आज ही के दिन यानी कि 15 मई 2003 में इराक युद्ध में अमेरिकी सेनाओं के कमांडर टॉमी फ्रैंक्स के खिलाफ ब्रुसेल्स की अदालत में युद्ध संबंधी मुकदमा दायर किया गया है। और आज ही के दिन यानी कि 15 मई के दिन 2005 में 20 साल के बाद कनाडा में भारत का विमान उतरा। 15 मई के दिन 2008 में श्रीलंका सरकार ने आतंकवादी संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध 2 साल के लिए और बढ़ा दिया। और आज ही के दिन भारतीय मूल की मंजुला सूद ब्रिटेन में मेयर बनने वाली पहली एशियाई महिला बनी।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 6 बजे हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, आज के शेष कार्यक्रम इस प्रकार से रहेंगे। आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की, और 6:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे जयपुर केंद्र से। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे चौपाल। आज की प्रस्तुति रहेगी मुकेश जावरिया की। कार्यक्रम रहेगा गीतारो गजरों, और इसके साथ साथ आप सुनेंगे बाजार भाव और मौसम की जानकारी। 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 8 बजे आप सुनेंगे एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट स्कैम यानी कि खेलों के समाचार, और 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे News@9 यानी कि अंग्रेजी में समाचार। ये सभी समाचार हम आपको सुनवाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत, और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हमारी आज की सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू, जो आपके खतों और मेल पर आधारित रहता है। और संध्या 7 बजे सुनना न भूलें चौपाल, जिसमें आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतारो गजरो, और आज की मधुर प्रस्तुति रहेगी मुकेश जावरिया की।

जी हाँ दोस्तों, ये है आकाशवाणी का सूरतगढ़ केंद्र, जहाँ से आप सुनते हैं बड़े ही मधुर मधुर कार्यक्रम और जिसको आप सब देते हैं बेहद स्नेह। मीडियम 15.26.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनते हैं सराय की।

0: मुख्य समाचार। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहां से हर साल 6 करोड़ चिप्स का निर्माण किया जा सकेगा। साथ ही करीब 2500 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका शिलान्यास किया। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इन परियोजनाओं में भिवाड़ी में एलसीना इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, 34 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और खैरथल तिजारा के कई विकास कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है और पिछले दो सालों में 35 नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान को जोड़ने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना जल समझौते के काम में तेजी आने की भी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में सेमीकंडक्टर की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 12 साल में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संसाधनों के संयमित उपयोग से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त होगा। ईंधन बचत का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री खुद इलेक्ट्रिक वाहन से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बचत एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी वाहनों के सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी है और आने वाले समय में ऊर्जा प्रदाता राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू की गई है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
0: राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। 14 जून तक चलने वाले इस चरण के लिए प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

0: इसके लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा एंट्री करने, परिवारों की सही जानकारी दर्ज करने और सर्वे के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराया गया। वहीं स्वगणना का विकल्प का आज आखिरी दिन है। स्वगणना के जरिए लोगों ने 1 मई से खुद अपने मकान और परिसंपत्तियों से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्त ने आज इस बारे में एक आदेश जारी किए। आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने वाली थी, जिसके लिए पिछले 2 माह से व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ बातचीत के दौरान चुनौतीपूर्ण समय में यूएई की भूमिका की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 14 जून तक प्रवेश पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। जून में होने वाली अगली परीक्षा की फीस नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते NTA ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि NTA में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि CBI नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्ति का निजी विषय नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र से जुड़ा मसला है। श्री शेखावत आज बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांसवाड़ा और कुशलगढ़ जैसे आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय तक संसाधनों की कमी रही, जिसके कारण स्थानीय लोगों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, लेकिन केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की

0: मौत के बाद अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरिस्का प्रशासन ने कैनाइन डिस्टेंपर नामक खतरनाक वायरस के खतरे को देखते हुए अपनी निगरानी टीमों को सक्रिय कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित कुत्तों के माध्यम से बाघों में फैलता है। वर्तमान में सरिस्का में 52 बाघ हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन अब आसपास के क्षेत्रों में कुत्तों के टीकाकरण और बाघों की विशेष निगरानी पर जोर दे रहा है। भरतपुर के मुक्केबाज यश कुमार ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित जूनियर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। यश ने 33 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 4-1 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की। यश कुमार जूनियर वर्ग में इस चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला राजस्थान के पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उनकी इस सफलता पर खेल जगत में खुशी की लहर है। और अब मौसम। प्रदेश के कई भागों में पिछले 24 घंटे में आंधी और बारिश की गतिविधियों से ज्यादातर स्थानों पर तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आमजन को भीषण गर्मी से मामूली राहत मिली है। हालांकि अभी भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दूसरी ओर आज दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। सीमावर्ती जिलों के लिए विभाग ने तेज गर्मी और लू का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी में बनाया जाएगा। इस क्लस्टर से हर साल 6 करोड़ चिप का निर्माण होगा। राज्य में जनगणना के पहले चरण के तहत कल से मकान सूचीकरण का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन का सबसे सस्ता और प्रभावी विकल्प। और मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से भरतपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं शिव कुमार वशिष्ठ। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना के दौरे की। हाल ही में श्री मीना ने जिले के भुसावर क्षेत्र के झरोटी गांव में आयोजित पद दंगल कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में लोक गायन और लोक नाट्य को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये हमारी संस्कृति की पहचान है, इसकी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने पर जोर दिया। डॉक्टर मीणा ने इस दौरे में दलपुरा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने जनसुनवाई भी की। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क और अन्य समस्याओं से कृषि मंत्री को अवगत कराया। कृषि मंत्री ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए बने कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने लोगों से राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और किसानों से जैविक खेती अपनाने की भी अपील की। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में भरतपुर में आयोजित हुई। इसमें केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान सांसद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से समयबद्ध क्रियान्वयन कर आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों का चयन कर गुणवत्तापूर्ण आवास बनवाने को कहा। साथ ही राजविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत पिछले दिनों एक दिन के भरतपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने अपना घर आश्रम में 4 नए भवनों का लोकार्पण किया, साथ ही बालिका सदन का भूमि पूजन किया और राष्ट्रीय आश्रम तथा गौशाला की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस मौके पर श्री गहलोत ने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची मानवता है। उन्होंने सेवा

0: और संस्कारों पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति के साथ साथ बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से शैक्षिक सुधारों के लिए स्वयं प्रेरित होकर ब्लॉक वार कार्य योजना बनाकर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। जिला निष्पादन समिति की बैठक में उन्होंने मिड डे मील योजना की सामग्री की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही विद्यार्थियों और शिक्षकों की उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड करवाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जिले में 428 कन्याओं के विवाह पर लगभग 1,96,00,000 रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है। कन्याओं के विवाह के लिए दी गई सहायता राशि से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। जिले में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता फैलाई गई। इस दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में किशोरियों और महिलाओं को जानकारी दी गई। 8वें पोषण पखवाड़े का आयोजन भी पिछले दिनों जिले में हुआ। इस दौरान बच्चों और महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियां आयोजित कर मातृ और शिशु पोषण के महत्व और एनीमिया से संबंधित जानकारियां दी गई। इसके अलावा मोटे अनाज और स्थानीय खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर पोषण के महत्व से अवगत कराया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिले में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर के श्री शमशानेश्वर महादेव मंदिर में विशेष धार्मिक कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भजन कीर्तन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सहित आसपास के जलीय क्षेत्र में बीते दिनों सारस गणना की गई। मचानों पर बैठकर उद्यान के कार्मिकों, पर्यावरणविद, गाइड और पक्षी प्रेमियों ने इस काम में शिरकत की। इसके साथ ही भरतपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला, हर साल 6 करोड़ चिप बनेला। राज्य में जनगणना 2027 रा तेतकाल मकाना री लिस्ट बनावन रो काम शुरू करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इनरा उत्पादन रो सब सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज में दाखिला सारू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून न ओजू वेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो चावेला। वो क्लस्टर बनावन रा काम माए करीब 1,200 करोड़ रुपया रो निवेश फैला। ई कारखाना माए हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जा सकेला। ईसा गई करीब 2,500 लोगा ने नौकरी धंधा रा मौका मिलेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आज वर्चुअल तरीका इनरा काम री शुरुआत कीनी। वे ईसा गई 400 करोड़ रुपयों भत्ता खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम रो उद्घाटन कीनो। ई मौके मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार प्रदेश में आए निवेश ने बढ़ावो देवन सारू लाडला 2 साल में 35 नीतियां बनाई। वे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने जोड़बा वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना और यमुना नदी रा पानी जुड़िया करार रातेत काम माए तेजी लावन री जानकारी दिनी। श्री शर्मा बतायो कि सरकार नौजवाना सारू पंचायत लेवल माथे अटल ज्ञान केंद्र खोलन माथे ध्यान दे रही है। ई मौके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो कि देश में सेमीकंडक्टर बनावन रा 12 कारखाना लगाई चिया है और लाडला 12 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हल्का में 6 गुना बढ़ोतरी सागे। अब कुल उत्पादन 13,00,000 करोड़ रुपया रा लेवल के न पोगरियो है।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13,00,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक

0: मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऊर्जा री बचत ना इंडरा उत्पादन रो सबू सस्तो और असरदार विकल्प बतायो है। वह आज जयपुर में राखी जिया राजस्थान एनर्जी कॉन्क्लेव में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि पेट्रोल डीजल री बचत करण री सगला री जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू लाडला दिना करी जी अपील पाछे मुख्यमंत्री कहो कि राज्य सरकार सरकारी गाड़ियां सीमित तादाद में काम लेवण जुड़िया निर्देश जारी कीना है। वह कहो कि राजस्थान सूरज री रोशनी बिजली बनावण रा हलका माए देश माए अगाड़ी है। मुख्यमंत्री कहो कि अक्षय ऊर्जा ने बधावो देवण सारू राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू करी जी है। वह कहो कि सरकार साल 2030 ताई 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रो लेवल हासिल करण न ध्यान रखता थका काम कर रही है।
2: राजस्थान भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। हमारे राज्य में 828 गीगावाट सौर ऊर्जा और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता उपलब्ध है। अब तक राज्य में 47 गीगावाट से अधिक की अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है और राजस्थान सौर परियोजना स्थापित में देश में अग्रणी है। हमारी सरकार ने राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है। इसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट क्षमता स्थापना के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
1: राज्य में जनगणना 2027 रा पहला दौर रा तेत काल मकानारी लिस्ट बनावण रो काम शुरू करियो चावेला। 14 जून ताई चालन वाला इन काम सारू प्रगणक घर घर जार जानकारी भेड़ी करेला। इन सारू प्रदेश माए न्यारी न्यारी ठोणा सिखावण शिविरां रे जरिए प्रगणका ने जरूरी सिखावण दीरी जी। वाने मोबाइल ऐप रे जरिए जानकारियां रो इंदराज करण, परिवारां री जानकारी दर्ज करण और सर्वे रे दौरान राखी जावण वाली सावधानियां रे बारे माए अभ्यास कराई चियो। इन बीच स्वगणना करण रो आज आखिरी दिन है। स्वगणना रे जरिए लोग खुद 1 मई हमारा मकान और परिसंपत्तियां जुड़ी जानकारी ऑनलाइन तरीका दर्ज करा रहा है। जयपुर माए 23-25 मई ताई राखी जावन वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 टाल दी रिची है। कृषि आयुक्त रियोरों आज इं 12 मई हुक्म जारी करी चिया। ध्यान जोग है कि इन कार्यक्रम सारू लाडला 2 महीनाओं तैयारियां करी जा रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात रा अबुधाबी माए वठेरा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सागे मुलाकात कीनी। इन दौरान ऊर्जा सहयोग और दोनों देशों बीच कारोबार जुड़ी चर्चा करी ची। प्रधानमंत्री मोदी यूएई माथे हाल ही माए करी ची हमला री करड़ी निंदा कीनी। वह मुश्किल भगत में यूएई रा काम री सराहना करता थका यूएई सारू भारत री हिमायत री पुष्टि कीनी। श्री मोदी कहो कि तनातनी रा मौजूदा दौर में बातचीत और कूटनीति आगे चालन रो गेलो है।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: देश रा मेडिकल कॉलेजा में दाखिला सारू नीट यूजी 2026 परीक्षा 21 जून ने ओजूली जावेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा रे बारे में खबर नवीसा सागे बातचीत करता था।

0: आ जानकारी दिनी। वे बतायो के इंसारू 14 जून ताई एडमिशन कार्ड जारी कर दिया जावेला। श्री प्रधान कहो के 21 जून ने उजू ली जावन वाली ई परीक्षा री कोई फीस नी ली जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहो के हाल ताई ओएमआर शीट माथे ली जा रही नीट परीक्षा आवता साल कंप्यूटर जरिए ली जावेला।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री कहो के विद्यार्थियों ने परीक्षा देवन सारू पसंद रो शहर चुनबारो मौको दियो चावेला। मंत्री कहो के सीबीआई नीट पेपर लीक मामला री पूरी जांच करेला। ध्यान जोग है के 3 मई ने भी नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक वेवन री शंका पाछे रद्द करती री ची ही। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि स्वास्थ्य केवल इंसान रो निजी मुद्दों नहीं है, बल्कि पूरा समाज और देश हूँ जुड़ियो है। वे आज बांसवाड़ा जिला रा कुशलगढ़ में एक अस्पताल रा उद्घाटन रे मौके बोल रहा है। केंद्रीय मंत्री आयुष्मान भारत योजना रो जिक्र करता थका कहो के इरा तेत 5 लाख रुपया ताई रा खर्च रो इलाज मुफ्त करावन रो सुबी तो दियो चावे है। मध्य प्रदेश रा कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघां री मौत रा मामला पाछे अलवर जिला रा सरिस्का टाइगर रिजर्व में सावचेती बधा दीरी ची है। प्रशासन कैनाइन डिस्टेम्पर नाम रा खतरनाक वायरस रा खतरा न ध्यान रखता थका निगरानी टीमा ने काम माथे लगा दीनी है। जानकारा ने मुजब ओ संक्रमण संक्रमित कुत्ता रे जरिए बाघा माए फैले है। सरिस्का टाइगर रिजर्व माए 52 बाघ है, जाने संक्रमण बचावन सारू RSRA रा कुत्ता रे टीका लगावन माथे जोर दियो चारियो है। भरतपुर रा मुक्केबाज यश कुमार उज्बेकिस्तान रा ताशकंद माए राखी जी एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप माए सोनारो तमगो जीतियो है। वह 33 किलोग्राम भार वर्ग रा फाइनल मुकाबला में कजाकिस्तान रा खिलाड़ी ने 4-1 हराया। यश कुमार ई चैंपियनशिप रा जूनियर वर्ग में सोना रो तमगो जीतन वाला राजस्थान रा पहला मुक्केबाज बन गया है। अरबे मौसम प्रदेश रा कई हल्का माए लाडला 24 घंटा माए आंधी और बारिश वेवन रे कारण पारो 2-3 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो। इनू गर्मियों थोड़ी सत्ता मिली। हालांकि हाल ही कई छोड़ा ऊंचो तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाहियो है। दूजी कानी आज दौसा करौली सवाई माधोपुर और जयपुर जिला माए कठे कठे जोरदार बायरो बजन सागे हल्की बिरखा भी। मौसम विभाग रे मुजब काल उजू पारो चढ़बारा आसार है। महकमो सरहदी जिला सारू तेज गर्मी और लू बाबत चेतायो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-11-7800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर जो सुन ले रहा सा 1-800-11-7800। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर में खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा राज्य रो पहलो सेमीकंडक्टर क्लस्टर भिवाड़ी माए बनायो जावेला। हर साल 6 करोड़ चिप बनाई जावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 राते कालू मकाना री लिस्ट बनावन रो काम करियो जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ऊर्जा री बचत न इनरा उत्पादन रो सबू सस्तो और असरदार विकल्प बतायो। और मेडिकल कॉलेज माए दाखिला सारू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा 21 जून न उजू भेला। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

मीडियम वेव 320.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीतारो गजरो। प्रस्तुति रहेगी नवीन सिसोदिया और मुकेश चामरिया की।

0: राम राम नवीन भाई जी, राम राम।
1: राम राम मुकेश भाई, राम राम सगला सुनने नहीं भी राम राम।
0: बिल्कुल नवीन भाई जी, और आज शुक्रवार को दिन है और आज आप थोड़ी बात कर लें आप सागे खाने पीने की।
1: खाना पीने की बात कर से, लेकिन ते चौपाल में आज राबड़ी लेके बैठे हो। बात तो सही कोनी, टेम थोड़ी है कोई।
0: राबड़ी तो देखो, अब गर्मी को टेम है रही, टेम का मार राबड़ी जिसो जो को भोज्य पदार्थ है नी।
1: तो सिंजिया ने थोड़ी ना राबड़ी पी जे, थे सारा दिन ही पीऊगा
0: देखो
1: कितने।
0: गर्मी तो सिंधिया में भी है, दिन में भी है, जद गर्मी लागे भी टाइम ही पी लियो। जितो आपा तरल पे पियांगा भी तो ही बढ़िया, बी में भी जे राबड़ी होवे तो कहणो ही के।
1: राबड़ी भी कई तरह की बनने लागी आजकल। मैं सुनी कि जोग आटा की भी बनावे लोग,
0: बिल्कुल, जोग
1: है
0: आटे की कई आटो रलागे भी बनावे, कई बार डो वाली राबड़ी बोले।
1: डोआरी भी बना। एक जोग आजकल के दलियो चाल रहे, बेंगी और बना बे के ठंडी करे, बताओ भाई।
0: अच्छा,
1: और बे के दाना दाना साता रहे, यहाँ यहाँ अलग सो टेस्ट आवे।
0: बहुत बढ़िया, मन लागे थे बनाई है आन दिना में।
1: आज ही पिए
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो थे सागे कौन लाए थे, तो मेरे लिए सूखी सीधी सी राबड़ी देखने
1: मन
0: लाए
1: तो
0: रहे हो बस।
1: बात इतनी है कि थे मैंने दी कौन देख ले, एकला पियोगा है।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, अब की बार थाने बा जो वाली राबड़ी बना के ले आके
1: अब गड़ा ले
0: देवांगा।
1: गा होगा जद्दी कोई बात है। चौपाल में तो ते राबड़ी लेगा हो कि कोई खाने वास्ते ऐसी कोई चीज़ ले रहा हो तो कोई बात है। पौष्टिक चीज़ें यहाँ पर बात करा मुकेश भाई। देखो गांव में भी आजकल जो खाज है नहीं, अभी
0: हाँ
1: मैं लोग चिप्स कुरकुरा ऐसी चीज़ें खाने लग गए
0: खान
1: हैं।
0: लाग गया।
1: तो आप आई चाहवा कि भाई मारी बात सुन गई, अगर स्वास्थ्य वर्धक चीज़ें जिकी बे खावे तो बढ़िया रहे। जिया थे बात करी राबड़ी की, कोई चीना भी गोगा खा ले
0: हाँ,
1: हैं।
0: एक थारू नाम सुन रहे राम रोट को।
1: और राम रोड तो थारू सुने, बता दो।
0: राम रोट गमा यही है भी आटो है, जो को आपा जिया चने गोर बाजरी गोर या रला गेर बिंग और रोट बनावा, बिंग मा आपा भांत भांत की सब्जियां गेर दिया की लूण मिर्च गेर दिया यहाँ कर बिना, फिर अंगीरा पर सीधो सेक गए और फिर
1: अच्छा
0: दही घसा गए या सीधो ही खावानी, तो भी वो बहुत पौष्टिक है।
1: बताओ तो थे लियाओ कोनी, बा बात अलग है। तो आज के गितारो गजरो भी आपा लेगा या तो अपना
0: हाँ
1: जिका श्रोता भाई जितना भी है वाना आपा बांगी पसंद रहा गीत सुनाऊंगा। तो
0: बिल्कुल,
1: मेरे को ना संदेश आया मैं पढ़ दूंगे
0: पढ़ो
1: हैं।
0: पढ़ो साहब।
1: ये देखो गांव खोखरा वाली से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा को संदेश आया। एक है कि गितारा गजरा कार्यक्रम में थाने नमस्कार, और एक है कोई भी गीत सुना दो, गीत
0: बिल्कुल सुनो
1: सुनाओगे
0: सर,
1: आगे पसंद हुआ पा।
0: बिल्कुल।
1: देखो गांव बांडी वाला फाजिल का पंजाब से, ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, ये भी कहे कि राम राम सा और कोई गीत सुना दो। तो राम राम सा थाने भी
0: अन्य भी सुनवा संगीत।
1: तो सागे। देखो एक और मैसेज आयो है, एक है कि सीमा मिश्रा को कोई गीत सुना दो। गांव नाई वाला जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा, ये नमस्कार भी भेजिए। तो वेद
0: नमस्कार
1: मिड्डा
0: अन्य
1: जी
0: भी,
1: ना और अलका मिड्डा जी ना हमारी भी
0: राम
1: नमस्कार
0: राम
1: सा
0: नमस्कार।
1: है। और थारकने भी कोई आयो संदेश के? हाँ
0: बिल्कुल, मेरे कने संदेश आयो है, गांव घमंडिया छू भेजनिया है, जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, सरिता, तमन्ना, सचिन, विष्णु और शिवम ढूकिया। और आगे सागे ही आपने मैं संदेश भेजो है, 5 BNPM छू किक्कर वाली जोड़ी छू, अशोक मांझू, सिद्धार्थ मांझू। ए
1: अच्छा
0: चौपाल पेश करने वाला ने राम राम लिखी है और सागे लिखा है कि सही राम भगत की आवाज में भजन
1: अच्छा
0: सुनवा दियो। तो आंगी
1: तो
0: फरमाइश भी आपने नोट कर ली
1: आ
0: और
1: लो,
0: जरूर सुनवा
1: मैं
0: सा।
1: लिख ली लिख लियो है।
0: हाँ सागे
1: आगे
0: सागे लिख लियो।
1: अब देखो, ए राम राम दी है गांव जोगीवाड़ा, श्री गंगानगर, प्रेम सारण, मोनिका और मनीष सारण। एक है कि कोई भी राजस्थानी लोकगीत सुना दो। तो राजस्थानी लोकगीत तो मैं सुनाई श्या
0: कार्यक्रम ही
1: है
0: राजस्थानी
1: हैं।
0: लोकगीतांगो है।
1: हाँ बिल्कुल आना सुना श्या। और गीतार गजरा कार्यक्रम पेश करता ना मोकली मोकली रामा श्यामा दी है सादुल शहर से, राम कुमार रेवाड़ और चंद्र केला रेवाड़। एक है
0: बिल्कुल।
1: कि कोई सत्संग को कोई गीत, एक है कि ओड चुनर में तो गई रहे सत्संग में, राजस्थानी लोकगीत है तो ढूंढो थारा पिटारा मिला जे तो इसको कोई
0: देखो
1: है।

0: हाँ, धार्मिक भजन या भजन की फरमाइश करिए तो आपा ने भजन सुनवा दिया।
1: हाँ भजन सुना दो है
0: हाँ, भजन तो चाहे आपा अपनी पसंद सुनावा चाहेंगी
1: सिम
0: पसंद को, भजन
1: सिम
0: तो
1: जागो
0: भजन
1: टाइम
0: है,
1: है, भजन तो जरूरी है सब जगह
0: जरूरी
1: का
0: है,
1: है।
0: जरूरी है। लियो सुनो सा भजन।

0: नवीन भाई जी सुनियो भजन।
1: भजन तो फूट रो सा है
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने श्रोताओं ने भी पसंद आयो होसी।
1: बिल्कुल आसी
0: और अब आपने कन्ने जकी मेल पुगेड़ी है बे भी आप बांच दें।
1: बांस दो बिल्कुल बांस दो।
0: आपने ताई आप पहली मेल जकी आईडी है आ है गुरु तेग बहादुर मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब शुम भेजनिया है मोहम्मद अनवर अंसारी रवीना आफिया जावेद अंसारी सूरज अख्तर जैस्मिन शकीला आ फरमाइश करी है। और इंगा सागे ही अगलो जो को मेल आयो है वो आयो है उम्मे वाला गांव शूं भेजनिया है नौरंग सुथार बेटो विष्णु सुथार नीरज सुथार योगिता सुथार जया सुथार सुमन सुथार आ भी अगले गीत की फरमाइश करी है। वो मेल आयो है फाजिलका पंजाब खेड़ा शूं पंजाब शूं खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा विष्णु खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा लाडी खेड़ा शालनी खेड़ा टिवानशी खेड़ा और वाणी खेड़ा और आगे सागे है आरबी खेड़ा जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार। वो मेल आयो है जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश हूँ भेजनिया है मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी

0: इन्हीं ऋतिक बलवीर सिंह। आगलो मेला है बागपत उत्तर प्रदेश हूँ, भेजनिया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। ओ मेल आयो है बागवान मंजिल छोटी बलिया शू, भेजनिया है नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद, अखलाक अहमद, आमना सा आसमा, राबिया परी, आशु जूही, सदफ बागवान और छतरी टोल, तेघड़ा बाजार बेगूसराय शू, अदीबा अफसरी, इस्माइल आज़ाद, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम जी।
1: वाह साह मुकेश भाजी, मेल इतनी आई है
0: कट्ठा एक
1: एक
0: सांस
1: मेल
0: में
1: में
0: बांचनी।
1: मन लगा पूरी गली का नाम लिख दिया देखा है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: ऐसा
1: देखो
0: गया।
1: सग में मेरे को मैसेज आया भाई पढ़
0: हाँ
1: दूंगी,
0: पढ़ दो
1: वो
0: पढ़ दो।
1: एक गीत की फरमाइश करिए। देखो, ग्राम पिपर लोड सर गांव छत्तीसगढ़ से है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया। सगई देखो चौपाल वास्ता आयो है हयात कॉलोनी अररिया बिहार शू, फैजल इमाम को मैसेज आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, ये सब कालका से सगई लिखियो है। शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।
0: ठीक है।
1: सगई देखो चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, ये कह रहा है कि सीमा मिश्रा की आवाज़ में आने कोई सो भी गीत सुना दियो, तो एक में हो जाए श्या निहाल, तो निहाल कर दिया फिर
0: सुना दिया फिर आना सीमा
1: सुना दियो
0: मिश्रा की
1: सा
0: आवाज
1: सुना
0: में,
1: दियो।
0: सुनो सा।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बींजवायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: संदेश उपेला सुनियो भाई जी, सीमा मिश्रा की आवाज में गीत।
2: तो देखो आंगी फरमाइश ही, तो फरमाइश तो देखो करनी पड़े।
1: मोरिया बुला दिया
2: है, मोरिया बुला दिया। ये देखो कागज तो रेडा है, कागज पढ़ दूंगे।
1: हाँ बिल्कुल सागा आन दियो।
2: जिला आगर मालवा मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, बेटी सुषमा, मंजू, बबीता और ओम प्रकाश, कनेरा मोहल्ला पटियाला से है बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। ठीक है सागे, देखो इंदिरा बिहार रायगढ़ से, वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां और रजा नांद गांव से है याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। सागे देखो जेल रोड रायगढ़ से है रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदिबा तिवारी, मसीता डबवाली साइड है दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजोत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट, शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत है गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से। सागे देखो बेगराज पारिक, बिमला पारिक, शिशपाल, सुमित्रा, कविता, मनीषा, विवेक, लोकेश पारिक, ए सगड़ा भेजो है नोर से।
1: ठीक
2: है टीडिया सर है नोर में गाँव।
1: अच्छा
2: सागे देखो रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से आयो है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। अरे आखिरी खत देखो मेरे को ना आया है जेके बकोलिया, श्रीमती सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बकोलिया, डब्बाली हरियाणा से।
1: देखो कागतिया भी सांगोपांग आइड है,
2: कागतिया सांगोपांग हो देख लो।
1: और इंग सागे सागे आपा की संदेश भी बांच दिया।
2: संदेश बांचो सा,
1: ओ संदेश आयो है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाभलीशु, भेजनिया है गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक येले। इंग सागे यो आगलो जो को अपने कने संदेश आयो है वो है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड।

0: भेजनिया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। वो संदेश आयो है बेहर वाला खुर्द सिर सशु बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिय प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़, आ भी कोई भी गीत की फरमाइश लिखी है। और इंगे सागे हनुमानगढ़ टाउन शू आपने ताई मैसेज आयो है सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव तरड़, कांता चौधरी, यहाँ भी के है कि कोई भी थारी पसंद को गीत सुना दियो।
1: देखो मैं पढ़ू आ गए, गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा सा है, सतवीर सिंह बिजारणिया, देवेंद्र सिंह बिजारणिया, राजपाल अभिषेक, योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारणिया, ये भी कहे कि राजस्थानी गीत मने सुना दियो कोई भी। सागे देखो बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंगो मैसेज आयो है। सागे आयो है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर और निर्मला नवाकर और विशाल। सागे देखो श्याम मिडा, सुमन मिडा, सहज मिडा, ये भी संग्रिया साहिल बापा ने मैसेज भेजो है। गीतार गजरा वास्ते गानो एक है कि मारे कोई भी तावड़ो धीमो पड़ जा रहे बजा दो, तो तावड़ो तो देखो मुकेश भाई जी अभी तो कौन ही, लेकिन
0: बादलिया
1: है अभी तो आज तावड़ा को गीत कौन चला हुआ। देखो रज्जाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और शहनाज इनकी फरमाइश करी है सा। सागे देखो मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गोड़ है, एक है कि कोई भी माने भजन जी को सुना दो, भजन देखो आपा पहले सुना दिया तो मुकेश भाई जी वो थारे कुर्ते में कोचरो क्या हो रखे है।
0: ओ भाई जी आन दिना में के है कि उंदरा बहुत हो रहा है,
1: तो उंदरा थे उंदरा लड़ लिया करो फिर
0: लड़के लिया अब समझ उबारा हो रही है
1: मन लगा उंदरा लड़ाई तो उंदरी कर सी फिर
0: उंदरी करेगी बिंगई तबासी
1: बिंगई तबासी तो बजा दो एक गीत
0: करा दिया लड़ाई फिर उंदरा उंदरी की
1: लड़ाई आज तो देखी जैसे
0: ठीक है लियो सा।

0: तो देखो मुकेश भाई जी,
1: हाँ
0: उंदरा
1: दादा,
0: उंदरी में देखो राजीप हो गयो और एक गया हरिद्वार
1: ठीक है।
0: है। तो अब थारे जगह कमीज और कुर्ती है नी, अब मैं कोनी बेच को करे भी
1: अब
0: ठीक
1: कौन
0: है।
1: करे नहीं, अब तो देखो विवाह में सुलह होगी, मेन बात तो बाय नहीं।
0: हाँ सुलह हो गई, लड़ता है तो लड़ता लड़ता कोचरो फिर थारे में कर दियो ये
1: देखो लड़ाई भी नवीन भाई जी बैठे
0: प्रेम
1: ही होवे, जैठे प्रेम प्यार होवे।
0: प्यार है। तो देखो प्रेम अपन है श्रोता की तो करे, देखो कटे कटे सु मैसेज आया है।
1: सुनाओ।
0: सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया सु, आदर्श पाल सिंह जोशन वैंकूवर कनाडा सु, और रॉबिन सिंह जोशन और
1: ठीक
0: चक
1: है
0: 78 LNP सु, डॉक्टर विचित्र सिंह और आंगो पोतो है अरविंदर सिंह ठीक है। गांव हीरवाड़ी फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, ये सब राम राम दिए सा। और सागे देखो अगलो मैसेज आया, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, फाजिलका हनुमानगढ़, दोनों फाजिलका एक सागे किया लिखे देखो सा है, नहीं एक है
1: बिल्कुल
0: बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका
1: हाँ
0: से है। गांव नथाना पंजाब से लिखे, हरजिंदर चिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। सागे देखो जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। मुकेश भाजी ये नाम थारो कौन पटी जाता
1: है मेरु तो कौन
0: है
1: बन चीजे।
0: अंग्रेजी में, थारो तंग है क्या हाथ?
1: बिल्कुल देखो जी, मैं तो अंगूठा छाप आंखा टपड़ी दे ऐसा ना।
0: डाणी लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इरमान खां और सीमा बानो, विनोद खां, एक है कोई से गाना सुना दियो।
1: ठीक
0: अलीका
1: है
0: तहसील डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। और सागे देखो फाजिलका पंजाब खेड़ा से भूषण परिवार है, भूषण परिवार को तो आप पहला नाम पढ़ दियो सा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल पढ़
0: तो
1: दियो।
0: सागे देखो रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। सागे देखो बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली खूबचंद वर्मा, ग्राम पंचायत बठेणा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से।
1: दूर से
0: देखो
1: आए
0: मुकेश भाई जी कितनी दूर दूर से अपना कहना मैसेज जान ला रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: लखोली हेड से मास्टर भवनलाल, कृष्णा विशाल, सौरभ ममता।

0: राजबाला, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, संगरिया, मुकना, राम और महावीर लोहरा। सागई देखो डब्बाली से बसंत चंद चांद को मैसेज ऐड है सागई, ठीक है नी। अरे एक और नरेंद्र भाटी, वीणा भाटी, अरविंद सोजन भाटी और गणेश चौक रातानाड़ा जोधपुर से,
1: ठीक है।
0: बहुत आज तो बहुत ही संदेश आया अपना,
1: बहुत संदेश आया,
0: थोड़ा घना थे पढ़ते हो फिर
1: लियो। मैं बंसू कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से हूँ। भेजे है आपने संदेश रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द सिंह राहुल। वो संदेश आयो है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से हूँ। प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। वो संदेश आयो है अपना ताई फंवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चुरू राजस्थान से। संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा और समस्त सोनग्रा परिवार। अगलो जो को अपना संदेश आयो वो आयो है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी। भाई जी थे पढ़ो यार, मेरे तो समझ में आन कौन रही है, ओखा है नाम।
0: मैं थाने पहले क्यों राबड़ी ज्यादा ना
1: राबड़ी पीली मन तो आड़स चढ़ रही है।
0: थाने मैं क्यों नहीं।
1: हाँ
0: तो अब देखो वो अगलो मैसेज आयो है, देखो बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी, और डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और वसीम अंसारी। सागई सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफ्ताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। सागई देखो अमयपुरा जाड़ू खाट जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति। सागे लिखे है गाँव होडू जिला बालोतरा, बालोतरा मन लगा है बिना बाड़मेर कानी, उम्मीदाराम, दिनेश कुमार, राजेश कुमार, वीर सिंह। ये चंपा मिथ्यू गाणो पूछे तो अगली बार आना चंपा मिथ्यू गाणो सुना शाह,
1: बिल्कुल सुना
0: चक छ एम एस आर से अनूपगढ़ से रमेश कुमार, कृष्णा राम टेलर, गणपत राम टेलर, समीर पारुल, अंशुमन रामदेव, पूना राम मेहड़ा को कोई भी भजन सुनने वास्ते कहो है। सलार पहलगाम कश्मीर से अपना मैसेज आए, ठंडो ठंडो मैसेज आए हैं,
1: ठंडो ठंडो
0: परी ज्यादा, मिराज उद्दीन और नजमुद्दीन और कैसर उद्दीन। एक है कि कोई भी गीत मारो शामिल कर दो। अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान और गुरनूर मान ने मैसेज भेजा है, हरविंदर मान, कुलविंदर कौर मान। ए भी क्या कोई भी गीत बजा दो। राम राम सागे दिया पाने जलालाबाद से, जलालाबाद कट सी गए
1: भाई जी, मैं पूरा पतो लिखेड़ो को नहीं,
0: वेस्ट लिख रहा है सिर्फ
1: वेस्ट लिख रहा।
0: सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहुजा।
1: हाँ फिर सुने है, पर सुनने लग रहा है कार्यक्रम तो फिर आन समझ में आ जाए।
0: गांव डांगरी जिला जैसलमेर से आए देखो बाबूराम जयपाल, दिवेश चौहान, हुकम सिंह भाटी। सागई राम राम बोली है अपना अशोक कुमार सोनी, सुमन सोनी, अरुण भानुप्रिया और सारो परिवार सूरतगढ़ से। तो मुकेश भाई जी आंग सारांगी पसंद पे मना नहीं, एक वो निम्बुड़ो सुना दे,
1: निम्बुड़ो सुना दे। अब गर्मी को टाइम है,
0: शिकंजी बना लेंगा,
1: शिकंजी बना लेंगा। मंगा लिया नींबू?
0: मंगा लो सा,
1: ठीक।

0: वाह साहब मुकेश भाई जी, देखो खाटो खाटो मीठो मीठो निम्बूडो
1: बिल्कुल जी सर, हो
0: जी
1: गया
0: सोरो। अब देखो सांगली जिला से, जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला और सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख कुछ को मैसेज आयो है कि कोई भी गीत सुना दो सा। ये आपने देखो डोंडी लोहारा बाड़ोद छत्तीसगढ़ से बोल रहा है, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया, और सागे ही आंगा सागे है मास्टर अल कबीर। गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर से बोला है कानाराम सुखराम, श्याम सुंदर तपस्या चौहान, ए कोई भी गीत की फरमाइश करी है।
1: ठीक है
0: आज के दिन को मेरे कन्हा जी को आखिरी मैसेज आयो है भोपालगढ़ राजस्थान हुआ है, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा पढ़ियार गो। मैं कुछ थोड़ी घनी मेल और आईडी भी और बांस दे।
1: मेल और बांट दें आप आपने कने जकी मेल आईडी है बा है सरगुजा मेन पार्ट से भेजनी है वसीम थापा, सोनम थापा, आदिबा थापा, वली थापा, अक्रम थापा, फातिमा थापा, उल्लाह थापा, आसमा थापा और डब्लू थापा। इसो यागलो मेल आईडो है आपने कने इंदिरा बिहार दिल्ली शू याकूब असमा फकीर, यूसुफ असमा फकीर, इमरान इरफान, सरफुद्दीन असमा फकीर। वो मेल आयो है आपने ताई दतरंगी भट्टा पारा शू भेजनी है अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर, डब्ल्यू वली जमादार। वो मेल आयो है नवीन भाई जी आपने ताई गांव टूंकिया तहसील सिंधरी जिला बालोतरा शू भेजनिया है कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार डाबी, राधा तंवर, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। तो भाई जी सगड़ा की फरमाइश पर आप भजन सुना दें।
0: सुना दें आप, मेरे एक आधो कोई मेल और आईडी तो पढ़ दियो।
1: एक आ दो मेल कोई और देखन ला रहे हूँ कि तो ये मेल इन जगह दो दो तीन तीन बार भेज दिया बिंगी वजह से आपने दिक्कत आवे।
0: हाँ तो दिक्कत आवे।
1: वो मेल ढूंढे है भाई जी, वो आयो है किशनगंज बिहार शू रविंदर मोहनदास आशा देवी।
0: अच्छा

0: सागे ही आगलो जो को मेल आयो है वो है चक 5 MD पतरोड़ा शू भेजनी है मंगल जनागल राही श्रीमती रोशनी जनागल अंकुर जनागल इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। ये भी कहवा है कि सीमा मिश्रा की आवाज़ में गीत सुना दे तो आपने आप सुना ही दियो सीमा मिश्रा की आवाज़ में। इंगा सागे ही आपने करने जो अगलो मेल आयो है वो है लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा शू बिल्लू सिंह चिंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चिंडालिया बरखा योगेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार चिंडालिया। ये भी कहे कि मारो जको फरमाई साहबा शामिल करो।
1: देखो एक मेल और आयो है नो राजस्थान सु नरेंद्र सुथार मनोज सुथार हिमांशु सुथार पवन सुथार शंकर बिहारी शिव कुमार सोनू मिस्त्री महेंद्र सुथार काड़ू मिस्त्री गांव फिफाणा से जय सिंह धामू धर्मेंद्र सुथार और मदन सुथार। मैं कुआ बाने एक और आंगी फरमाइश पे
0: भजन सुना दिया
1: भजन सुना दो जानता जानता है।
0: सुनो सर
1: देखो एक एक बात और आईडी है एक है कि ज्यादा राबड़ी सामने पीले तो रतुन दी और हो जाता है
0: फिर भाई जी आज ही बंद है
1: जद दी थाने आज मैसेज कम दिख रहे
0: मैसेज कम दिख रहे आई मैं कोई धुंधलो धुंधलो सो केटा किया दिख रहे
1: दिन में पिया करो थे राबड़ी
0: दिन में
1: सामने पियो नहीं मेरे साथ बैठ कर पिया करो या एकला ना पिया करो राबड़ी है नहीं
0: 20 दिन पियांगा जिस दिन आप रेडियो में नए बोलनो होगा।
1: हाँ बात सही है
0: हाँ
1: तो बजा दियो सा भजन
0: सुनो सर

0: भाई जी, आज चौपाल अपन लंबो खींच लियो।
1: लंबो तो दो मन लगा 30-40 सेकंड ऊंचो खींच दिए थे है
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो चौपाल वो टेम तो हो गयो। अब इजाजत ले लियो वहां से
0: चला।
1: चलो सा
0: राम राम सा, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। आज की प्रस्तुति थी मुकेश चावरिया और नवीन सिसोदिया की। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लीजिए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम था मर्द। आयशा भोसले और अनु मलिक की आवाजें थी। संगीत अनु मलिक का था। लीजिए सुनते हैं आयशा भोसले की आवाज को। फिल्म का नाम है समाधि।

मसरूर सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत, आशा की आवाज, फिल्म का नाम था समाधि।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों को आप सुन रहे थे और आज आप सुन रहे हैं फिल्म दोस्ताना के कुछ गीत। कार्यक्रम का नाम है एक ही फिल्म से। इस फिल्म के गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

लता की आवाज़ को आपने सुना फिल्म दोस्ताना में। दोस्ताना 1980 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशन राज खोसला ने और निर्माण यश जौहर ने किया। इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलन और प्राण ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया है। यह फिल्म कुर्बानी, आशा और राम बलराम के बाद 1980 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रही थी। दोस्ताना राज खोसला द्वारा निर्देशित आखिरी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म दोस्ताना के गीत। अभी जो आवाजें आपने सुनी मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की थी, गीता आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, अगर इस फिल्म की संक्षेप सी कहानी आपको सुनवाएं तो इस प्रकार से है। विजय यानी कि अमिताभ बच्चन और रवि शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और दोनों एक दूसरे पर बहुत

भरोसा करते हैं। विजय एक पुलिस अधिकारी है और रवि वकील है। विजय अपराधियों को पकड़ता है जबकि रवि उन अपराधियों को बाहर निकलवाता है। उसे डागा यानी कि प्रेम चोपड़ा द्वारा काम पर रख लिया जाता है। एक दिन विजय और रवि शीतल यानी कि जीनत अमान से अलग अलग जगहों और समय पर मिलते हैं और दोनों को उससे प्यार हो जाता है। जहां विजय अपने प्यार के बारे में जता चुका है और शीतल द्वारा उसे पसंद किया जाता है, वहीं रवि की शीतल पर एक तरफा मोहब्बत है। रवि शीतल के लिए अपने प्यार के बारे में विजय को बताता है जो तहस नहस हो जाता है, लेकिन रवि के लिए अपने प्यार का बलिदान करने का फैसला करता है। हालांकि एक गलत फहमी होती है जब डागा विजय और रवि की दोस्ती को तोड़ने के लिए विजय और शीतल की एक तस्वीर रवि को दिखाकर उकसाता है। विजय और रवि पहली बार प्रतिद्वंदी बन जाते हैं। फिल्म के बाकी हिस्से विजय और डागा के बीच संघर्ष को दिखाते हैं। गलत फहमी के बाद रवि डागा की तरफ हो जाता है, लेकिन बाद में सच्चाई जान जाता है और अपने कार्यों के लिए प्रायश्चित करता है। डागा रवि और शीतल को बंदी बना लेता है। तब विजय वहां अपने दोस्त को बचाने आता है, लेकिन वो भी फंस जाता है। उसके बाद रवि और विजय किसी तरह से आजाद हो जाते हैं और डागा वहां से भाग जाता है। रवि और विजय डागा का पीछा करते हैं। डागा और विजय के बीच लड़ाई होती है। डागा विजय को बातों में उलझाकर गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन विजय पहले ही सावधान हो जाता है और वो डागा को गोली मार देता है। डागा मारा जाता है। फिर विजय और रवि दोनों दोस्त एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये है छोटी सी कहानी इस फिल्म की। सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ सुनी। फिल्म दोस्ताना 27 अक्टूबर 1980 को रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के सभी गीतों को आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसमें आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोंसले, लता मंगेशकर की। और दोस्तों इस फिल्म के लिए जो पुरस्कार नामित रहे उनमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए ये दोनों नामित रहे इस फिल्म में, और आनंद बख्शी को सलामत रहे दोस्ताना हमारा गीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए नामित किया गया, और मोहम्मद रफ़ी को मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया इस गीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा।

एक ही फिल्म से अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आज की फिल्म थी दोस्ताना। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में इस वक्त रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। इसमें सबसे पहले आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन और उसके बाद समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ 8:09 यानी कि अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन कुमार। सचिन, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद शक्ति।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण 7 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। भारतीय वुशू टीम ने मकाऊ में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में हरजिंदर कौर ने आज कांस्य पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची।

उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशिया अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 राज्य पदक जीत करके ऐतिहासिक अभियान का समापन किया। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक भी जीते हैं। इसके साथ ही लड़के और लड़कियों के कुल मिलाकर पदकों की संख्या 17 रही।

0: भारतीय मुक्केबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाए रखा। आज खेले गए फाइनल मुकाबलों में 64 किलोग्राम वर्ग में राखी ने उज्बेकिस्तान की रुखशोन बोनू अहदोवा को और 57 किलोग्राम वर्ग में नव्या ने जापान की सारा कोनो को 4-0 से हरा कर स्वर्ण पदक अपने नाम किए। लड़कियों में ही 48 किलोग्राम वर्ग में खुशी चंद, 63 किलो वर्ग में दिया, 70 किलो वर्ग में हिमांशी, 75 किलोग्राम वर्ग में ज्योति, 80 किलोग्राम वर्ग में वंशिका और 80 किलोग्राम से अधिक वर्ग में गुरसीरत कौर ने रजत पदक जीता। लड़कों के वर्ग में एकमात्र फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी लक्ष्य फोगाट ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। ताशकंद में भारतीय मुक्केबाजों का ये कीर्तिमान अभियान भारतीय बॉक्सिंग इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: सचिन, भारतीय बॉक्सिंग का एक स्वर्णिम अध्याय कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों ने हर क्षेत्र में पदक जीते हैं, लेकिन क्या ये कहा जाए कि विजेंद्र ने जो मशाल 2008 में जलाई थी
2: जी,
1: जिसको मैरीकॉम लंबे समय तक लेके चली, आज भारत के युवा खिलाड़ी अंडर 15 अंडर 17 वर्ग में उसको धारण करते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं?
2: हाँ नहीं, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्योंकि देखिए ओलंपिक में पदक पहला उन्होंने दिलाया था, लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं तो डिंको सिंह जैसे बॉक्सर भी थे जिन्होंने हमारे लिए बहुत सफलताएं, एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए थे, बहुत लंबे समय बाद वो जीते थे, कॉमनवेल्थ में भी अच्छा प्रदर्शन किया कुछ मुक्केबाजों ने लगातार, तो वहाँ से एक परंपरा कह सकते हैं कि, और ये पहले से चली आ रही है। कौर सिंह 1982 एशियाड में गोल्ड मेडल जीते थे, उससे पहले हवा सिंह हुआ करते थे, तो ये सब हरियाणा के ही, ज्यादातर डिंको को अगर हम छोड़ दें वो मणिपुरी थे, तो हरियाणा एक तरीके से नर्सरी बनी शक्ति बॉक्सिंग के लिए, क्योंकि वहीं से ज्यादातर हमारे मुक्केबाज निकले हैं जो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छाप छोड़ी है। तो और इसके अलावा जब हरियाणा से निकलने लगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सफलताएं मिलने लगी तो बाकी राज्यों में भी उसका असर देखने को मिला, नॉर्थ ईस्ट में भी उस तरीके की चीजें देखने को मिली, तो लगातार जो है जैसे लवलीना वगैरह जहां से निकल के आई, असम से आए कोई, मणिपुर से बॉक्सर हैं, मैरीकॉम का आपने जिक्र किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि नई पौध से ही आगे हमें बड़े मंच पे जो है खिलाड़ी मिलेंगे, और अगर अंडर 15 में 27, अंडर 17 में 17 इस तरीके के पदकों का अगर जखीरा ला रहे हैं हमारे नए नवोदित नई पौध, और अभी अंडर 19 स्तर पे अब प्रतियोगिताएं होंगी, तो यही अच्छी चीज है, सकारात्मक, बहुत सकारात्मक है ये, क्योंकि यही तो आगे चल के ध्वजवाहक बनेंगे हमारे जो असली
1: जो हमारी कतारों के ध्वजवाहक बनते नजर आएंगे यही खिलाड़ी आने वाले समय में। और सिर्फ बॉक्सिंग में नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने वुशु के खेल में भी अपना शानदार दबदबा दिखाया है। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा।
3: अपर्णा दहिया और शिवानी के नेतृत्व में भारतीय टीम ने मकाओ में अपनी शानदार स्किल और काउंटर अटैक रणनीति का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए एक यादगार अभियान का समापन किया। अपर्णा दहिया ने महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल मुकाबले में वियतनाम की मौजूदा विश्व चैंपियन टी फुओंग को सीधे सेटों में हराकर ये कीर्तिमान अपने नाम किया। महिलाओं की 75 किलोग्राम वर्ग में शिवानी ने अपनी रूस की प्रतिद्वंदी के सामने सांडा कौशल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या को 2 गुना कर दिया। अपर्णा और शिवानी ने पिछले वर्ष ब्राजील में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीते थे। पुरुषों की 48 किलोग्राम श्रेणी में कुशल कुमार ने रजत पदक हासिल किया। करीना और सागर दहिया ने 1-1 कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत के कुल पदकों की संख्या को 5 कर दिया। मकाओ में आयोजित इस प्रतियोगिता में 21 देशों और क्षेत्रों के कुल 110 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: सचिन, भारत ने 5 पदक जीते, 3 पदक भारत के लिए बेटियां लेकर आई। मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा शिवानी की, बीएसएफ में कांस्टेबल हैं
2: जी,
1: लास्ट ईयर सिल्वर जीती थी, अपर्णा भी सिल्वर जीती थी, और इस बार देखिए कि अब दोनों ने एक साथ पदक की चमक को बढ़ा दिया।
2: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि देखिए अगर कोई अपने पदक का रंग बदलता है खिलाड़ी तो ये एक बड़ी सफलता है। रजत से आप स्वर्ण पदक पे अपने उसको ला रहे हैं प्रदर्शन को, और अभी जिस तरीके से हम पहले 19 में प्रवीण कुमार थे, एक सांडा खिलाड़ी जिनको हम जानते थे कि वो पहले खिलाड़ी भारत

0: के हैं जिन्होंने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अब लड़कियां भी उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा और ये बहुत कोई पुराना खेल भी नहीं है भारत के लिए। वुशु मात्र 3 दशक पहले इसकी यहाँ शुरुआत हुई, और शुरुआत में तो एसोसिएशन लखनऊ से ही इसकी चलती थी जहाँ तक मुझे याद है। हो सकता है कि ये तत् थोड़ा बहुत फेर बदल के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उन लोग इस एसोसिएशन ने बहुत प्रयास किया भारत में इसकी जमे जड़। हालांकि अभी ओलंपिक खेल नहीं है शक्ति
1: जी, बिल्कुल,
0: लेकिन जिस स्तर पर भी अभी खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, और 5 पदक लाना लड़कियों द्वारा सारे पदक जीतना ये एक बड़ी उपलब्धि है।
1: जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 96 किलोग्राम का वजन उठा करके कांस्य पदक अपने नाम किया। तो आज कह सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ियों ने वजन उठाया भी है, वजन दिखाया भी है, और हर क्षेत्र में जहां पर भी बल प्रयोग हो सकता है भारत ने भरपूर मेडलों की संख्या बढ़ाई।
0: देखिए इसमें लगातार अच्छा प्रदर्शन चल ही रहा है, शुरुआत लड़कियों ने की, फिर कल का दिन एक पुरुष खिलाड़ी के नाम रहा, आज फिर हरजिंदर निकल के आई हैं मेडल विनर के तौर पे। और हरजिंदर का अभी पिछला रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने बर्मिंगम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो वे एक बड़ा कंपटीशन होता है चूंकि, तो उसमें कॉमन वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल लाना एक बड़ी सफलता है। और पिछले साल ही उन्होंने अहमदाबाद 2025 में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी मेडल जीता था। तो अपने प्रदर्शन को हालांकि अभी वो ब्रॉन्ज मेडल से ऊपर नहीं ले जा पा रही हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है कि 25 में भी जीता और 26 में भी जीत रही हैं, तो एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि भारोत्तोलकों के लिए बहुत बहुत चुनौतियां होती हैं बड़ी अलग तरीके की। आपने देखा ही होगा कल भी जो अजीत जीते थे वो मात्र 1 किलोग्राम वर्ग से उन्होंने किसी खिलाड़ी को 4th नंबर पे छोड़ा था और ब्रॉन्ज मेडल पोडियम पे आने में। तो ये बड़ा बड़ा कठिन खेल है ये कि आप 1-1 किलो किस तरीके से अपने वजन को बढ़ाते हैं, और बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी इंजरीज के बीच में
0: बहुत मुश्किल खेल है ये।
1: जी बिल्कुल, और 1-1 किलो वजन बढ़ाने में लंबा समय लगता है, लंबी प्रैक्टिस लगती है, और कहीं आपका एज ग्रुप बदल गया तो फिर आपको नई चुनौतियां नए सिरे से।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत चुनौतियां इस खेल में।
1: आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। लखनऊ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल मुंबई इंडियंस ने एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स पर 6 विकेट से जीत दर्ज की।
2: धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में कल वापस जीत की पटरी पर लौटने की उम्मीद लिए पंजाब किंग्स का सामना हुआ प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई इंडियंस की टीम से। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने टीम के लिए 35 गेंद में सर्वाधिक 57 रन बनाए। अजमतुल्ला उमरजाई ने भी 17 गेंद में 38 रन का अहम योगदान दिया। MI की ओर से शार्दुल ठाकुर ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई ने शुरुआत से ही सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए पारी को आगे बढ़ाया। रियान रिकल्टन और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने 39 गेंद में टीम के लिए 61 रन जोड़े। रिकल्टन 23 गेंद में 48 रन और रोहित 25 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए 33 गेंदों में शानदार 75 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं टीम के लिए बचा हुआ काम विल जैक्स की 10 गेंदों में 25 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी ने कर दिया। अजमतुल्ला उमरजाई ने पंजाब के लिए 2 विकेट भी लिए। सीजन के शानदार शुरुआत करने वाली पंजाब की लगातार 5वीं हार है जिसने उसके लिए प्लेऑफ की दौड़ को थोड़ा और मुश्किल कर दिया है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: सचिन, जिस तरह की शुरुआत पंजाब की सीजन में हुई थी, फेवरेट्स थी, अभी भी काफी हद तक फेवरेट्स है, और इतनी फेवरेट्स है कि लगातार 5 मैच हारने के बाद भी 4th नंबर से कोई हिला नहीं पाया है, लेकिन क्या हो गया इस टीम की फॉर्म को?
0: देखिए स्कोर तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक था, 200 रन कोई कम नहीं होते हैं, और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है इस टीम के लिए। इस सत्र में उन्होंने 8वीं बार ऐसा हुआ है कि 200 रन का स्कोर जो है टांगा है, और इससे पहले और पिछले साल भी उन्होंने ये इस तरीके का कर दिखाया था। सिर्फ 2 ही टीमें हैं जो उनके बराबर ठहरती हैं, लेकिन इसका वो बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे लगता है कि तिलक वर्मा जिस अंदाज में खेले हैं, मात्र 33 गेंदों पर उन्होंने 75 रन बनाए, और ये उनका पहला अर्धशतक है इस सत्र में 10 पारियों में, तो वो जिस तरीके से आड़े आ गए पंजाब के वो कहा जा सकता है। प्रभसिमरन की बल्लेबाजी अच्छी थी, उनको 2 कैच भी उनके ड्रॉप हुए और बहुत जल्दी जल्दी उनको जीवनदान ये मिले, लेकिन उसका वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए, ये आप कह सकते हैं कि

0: अगर वो 57 रन से कहीं बड़ी पारी खेलने में सफल होते तो मुझे लगता है कि, और जिस तरीके से बीच में मैच थोड़ा सा गेंदबाजों ने अपने कब्जे में लिया, एक ये भी वजह हो सकती है कि बहुत अच्छा उनका औसत चल रहा था, वो 200+ जा रहे थे, जा भी सकते थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट जिस अंदाज में लिए उससे मैच कहीं ना कहीं पंजाब के हाथ से निकलता तो नहीं। अब ये तो 200 रन तो पर्याप्त थे, फिसलता इस सेंस में आप कह सकते हैं कि जब मुंबई इंडियंस खेल ली तिलक वर्मा की वो इतनी बड़ी पारी आ गई तो उसके बाद इसको माना जा सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, शार्दुल ठाकुर उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं पंजाब के, लेकिन अब यह है कि इनके लिए करो मरो की स्थिति तो जरूर है, लेकिन टीम बहुत ही मुझे लगता है कि एक हौसले के साथ खेल रही है, जरा भी अपने ऊपर कोई दबाव नहीं आने दे रहे, ना खिलाड़ी ना कोच ना कप्तान, तो अगर उस हौसले के साथ ही उतरते हैं तो मुझे लगता है उसका लाभ इनको मिलेगा जरूर।
1: जी बिल्कुल लाभ मिलेगा, लेकिन पंजाब की नजरें आज के मुकाबले पे होंगी, जो कि अगर चेन्नई जीतता है तो शायद इस सीजन में पहली बार पंजाब अपने आप को टॉप 4 के नीचे पाएगा।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर पड़ सकता है।
1: जी बिल्कुल, अब पंजाब चाहेगा कि यहां से कम कोई गलती को ना दोहराया जाए और वापस अपनी पुरानी लय को।
0: वही है कि उनके 2 मैच बचे हैं तो उनको दोनों जीत रहे हैं, तो उस अंदाज से उनको खेलना है कि अब ये दोनों ही मैच हमारे लिए क्रूशियल है, हमें जीतने करो या मरो शब्द मैंने इसीलिए उनके लिए इस्तेमाल किया।
1: जी बिल्कुल, अब करो या मरो के मुकाबले पंजाब को खेलने होंगे और जो शीर्ष 2 में पहुंचने की दौड़ थी उसको फिलहाल शीर्ष 4 तक बांधने की कोशिश होगी। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामी को 21-12 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलाउत विदित्सन से 19-21 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को भी महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि भारत के लिए खेलों में जो आज एकमात्र बुरी खबर रही वह यह रही कि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु का अभियान थाईलैंड ओपन में आज समाप्त हो गया।
0: ये है कि मतलब क्वार्टर फाइनल तक देखिए आए, अब उससे आगे जाने की उम्मीद थी, लेकिन चूंकि दोनों ही मुकाबले बहुत कड़े प्रतिद्वंदियों के खिलाफ थे दोनों के, तो उस नजरिए से आप कह सकते हैं कि और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपका कमी रह गई। सिंधु भी लगातार अच्छा कर रही थी इस टूर्नामेंट में, लक्ष्य भी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दोनों के जो सामने जो खिलाड़ी थे वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए, तो वो मौका नहीं मिला उनको, लेकिन ले जाते अगर वो अपने अभियान को और आगे तो और ज़्यादा बेहतर होता।
1: जी बिल्कुल सचिन, लेकिन भारत की इस ऑल टाइम फेवरेट जोड़ी पे क्या कहेंगे, जहाँ पे सात्विक और चिराग हैं हर कॉम्पिटिशन में भारत को कुछ देते हैं।
0: वो तो बहुत ज़बरदस्त खेल ही रहे हैं और उनके वजह से देखिए बहुत सफलताएँ भी मिली हैं, और अब जब सिंगल्स में कुछ नहीं इस तरीके के कोई टाइटल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि डबल्स में आए कम से कम, क्योंकि जो बैडमिंटन ने जो एक दिशा दिखाई थी जो खिलाड़ियों के लिए वो कहीं ना कहीं बरकरार रहनी चाहिए, अगर वो सिंगल्स में नहीं तो डबल्स में सही।
1: जी बिल्कुल, डबल्स में उम्मीदों के साथ कल ये टीम सेमीफाइनल खेलने उतरेगी और उम्मीद होगी कि उसको किताब में बदलने की कोशिश हो। श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। धन्यवाद सचिन।
0: धन्यवाद शक्ति।
1: श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया।

0: अबुधाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज़ को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
5: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और

0: स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स के रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
0: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda World Cup in Macau. And India concludes Asian Under 17 Boxing Championships with historic 2 gold and 7 silver medals at Tashkent. Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आपने जगजीत सिंह की गाई हुई कुछ गजलें सुनी। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी साप्ताहिक कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू।

खुशबू दे विच पिंड खारियां टाणी सिरसा हरियाणा तो सतविंदर सिंह सतवीर सिंह बिजारणियां देवेंद्र राजपाल अभिषेक योगेश पूजा आरजू ते नव्या बिजारणियां इन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत है कर कर मिट्टी दी खुशबू दे विच। लो जी गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करणपुर तों मेल कर रहे ने राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू चीनू मन्नू शिव सेठी करणपुरी समाइल पाल मिस्त्री करणपुरी ते पवन गुज्जर पिंड 34 एसटीजी पीली वंगा तो प्रेमी बिशन लाल मेहरा अमन समीर रीतू मेहरा ते इन्हां दे साथी चाल कला पंजाब तो अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर अम्मा चाहल सारे दा मिट्टी की खुशबू दे विच बहुत बहुत स्वागत है। लो जी साढ़े कोले मेल जड़ा पहुँचा है विनोद विश्नोई कविता कमला बलवंत राम विश्नोई ते इन्हां साथियों का सूरतगढ़ तो थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच। अगला जड़ा मेल पिंड नथाणा पंजाब तो हरजिंदर सिंह छिंदा जसवीर जस्सी ते सीता ते गीता दा जड़ा पहुँचे उन्हों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फवारा चौंक वार्ड नंबर 8 चूरू राजस्थान तो सानू भेज रहे ने मेल संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमल सोनगरा कार्तिक सोनगरा ते इन्हां दे सारे साथी कार्यक्रम नू लाइव सुन रहे ने थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी कार्यक्रम दे विच। अजीत भावसार परमीला भावसार वीरम गाम गुजरात तो मेल भेज रहे ने थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच। लो जी मेल साढ़े को पहुँचे तो शब्द भी नाल इन्होंने थोड़े जे लिखे है पता नहीं कदों केड़ी गल जरूरी हुंदी है सब दी कोई ना कोई मजबूरी हुंदी है अपनी थां ते कोई संतुष्ट नहीं सब दी कोई ना कोई आस अधूरी हुंदी है रांझे दा की खा के पासे होजू हीर दा छन्ना उस दी चूरी हुंदी है औरत लई इत्थे इस्तेमाल इम्तिहान बड़े ने औरत लई इत्थे इम्तिहान बड़े बंदे लई बदनामी भी मशहूरी हुंदी है। ये लिख के भेजिया जी सानू सतीश अनेजा ने इन्हां दे नाल ने विमला अनेजा चंडीगढ़ तो सुनते हैं गीत

दिल मेरा रब दा रेडियो। जी हाँ, रब दा रेडियो ही हुंदा है दिल। रब दिल विच ही रसदा है, ते जदों सुनाई दिंदा है उदों ही पता चलदा है कि जिसनों असी बाहर लभदे फिरदे सी कि वह तो साढ़े दिल दे विच ही सी। दोस्तों, तुसी भी साढ़े दिल विचों आकाशवाणी दे कॉटन सिटी ठोडी सेवा दे विच कार्यक्रम पेश करदा। बहुते प्रोग्राम तुसी सुनदे हो जिहदे विचों एक मिट्टी की खुशबू जिसनूं तुसी हुण सुन रहे हो, ते इस दे वास्ते साढ़े जिहड़े सहयोगी साथी ने कंट्रोल रूम दे जगदीश चंद्र करोड़ीवाल ते चेत राम गेदर, ट्रांसमीटर ते साढ़े साथी है महावीर वर्मा ते जगदीश कुमार गोयल ते इन्हां दे नाल राजा राम गेदर। इन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच। लो जी, मेल साढ़े कोल पहुँच गया है। एयरपोर्ट रोड वंदरा नगर इंदौर मध्य प्रदेश तो नारायण खर्चे ललिता खर्चे गणेश खर्चे कार्तिक खर्चे परी खर्चे ते स्वाति प्रयाग चौधरी देविका चौधरी ते इन्हां दे साथियों का थोड़ा भी सब का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंदपुरा सीकर तो दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिंकी शेखावत का मेल भी साढ़े को पहुँचे। कहिंदे कोई भी गीत सुना दे कि तुसी सुन रहे हो जी पंजाबी थोड़े वास्ते असी वधिया वधिया गीत लैके आ रहे हैं। राम शरण विश्वकर्मा साहिल विश्वकर्मा मंजू रंजना वंदना प्रियल ते दिव्यांशी विश्वकर्मा पिंड ममना जिला हमीरपुर तो मेल कर रहे हैं। थोड़ा भी स्वागत है कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू दे विच। दोस्तों, पिंड धोब तहसील ओसियां जिला जोधपुर तो श्री राम ज्याणी ते गर्वित ज्याणी का मेल भी साढ़े को पहुँचे। थोड़ा भी बहुत बहुत स्वागत है। मुरादाबाद तो मुहम्मद फरमान मुहम्मद सलमान इरफान इसरार ते नरगिस खातून का खत मेल जरा साढ़े को पहुँचे, पहला भी असी पढ़ चुके हैं। लो जी, साढ़े को दुल्लापुर उत्तर प्रदेश तो मेल पहुँचे मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज कागज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहनी रितिक ते बलवीर सिंह। ते कहिंदे कोई भी गीत सुना दे थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम च तुसी गीत सुन रहे हो। हयात कलोनी अररिया बिहार तो फैसल इमाम मोहम्मद अफजल

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

महुआ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा था सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में।

हीर रांझा, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कैफी आज़मी के बोल थे, मदन मोहन की धुन थी। सुनते हैं कार्यक्रम का एक और नगमा।

मजहरुल सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। ये आवाज थी मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम था दोस्ती। आइए सुनते हैं जब जब फूल खिले, इस फिल्म का गीत।

आपने आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत सुना, कल्याण जी आनंद जी की धुन थी, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, और फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपर्क होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। ये समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एएमसीए निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज

0: मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरार हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen international peace and security. The ministers also called for addressing global challenges through diplomatic and political means to reduce conflict risks and stressed the importance of conflict prevention by tackling root causes. The ministers stressed their commitment to uphold multilateralism as necessary to address challenges threatening their shared planet and future, such as climate change. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today addressed the open session on the second day of the BRICS Foreign Ministers meeting. He said